आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर। एंड बात ये है कि शाहिद कपूर आजकल खुद से खुद की तारीफ नहीं कर रहे, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत गलत डिसीजन ले लिए। हाँ जी, शाहिद कपूर ने ओ रोमियो, देवा और भी बहुत सारी मूवीज जो रिसेंटली पिक करी ना, उसमें किसी में भी सक्सेस नहीं मिली। तो शाहिद कपूर ने इस डिसीजन को फॉर अ वाइल त्याग दिया है कि वो उस मूवी को करे या ना करे, उसके लिए उन्होंने दूसरी टीम्स को जो है ना वो जिम्मेदारियां दे दी है। मुझे ऐसा लगता है कि यार सही भी है, बिकॉज एक पॉइंट के बाद आप बस ये जानते हैं कि मुझे ये काम आता है, लेकिन मुझे कौन सा काम करना चाहिए ये शायद कोई और डिसाइड कर दे तो ठीक रहता है। डोंट यू थिंक सो? हाँ चलो ठीक है, इसी बात पर मैं आपका IQ लेवल देखकर, आपके नॉलेज का लेवल देखते हुए आपको एक चीज ऑफर करती हूँ कि सिंगापुर में आ चुका है द लायन सिटी चैलेंज, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, वो चाहे जनरल नॉलेज हो, लाइफ स्टाइल हो, बॉलीवुड हो, समथिंग लाइक दैट, हर तरह की कैटेगरी में आपका नॉलेज चेक किया जाएगा और बदले में आप गिफ्ट्स और प्राइजेस भी जीतने वाले हैं। तो फर्स्ट लेवल जो है वो ऐसे शुरू होगा कि आप हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप करिए लायन टाइप करके और भेज दीजिए 9151 8963, और सामने से जो मैसेज आए, जो सवाल आए, उसका जवाब ASAP दीजिए ताकि इस गेम में आप एक पार्टिसिपेंट बन पाए। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: एक बार जो मुझे बुरा लग गया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाय ऐसी बातें कौन करता है? सलमान खान। अंजी कमिटमेंट तो अब पुराना डायलॉग हो गया, अब आजकल इन्हें जल्दी से बुरा भी लगने लगा है। आप हल्के में मत लीजिए इन्हें, सलमान खान है वो सलमान खान। अंजी रिसेंटली किसी फिल्म मेकर ने ये जरूरत कर ली कि काले हिरन नाम की मूवी जो है वो तैयार कर दी। यार आपको पता ही है कि ब्लैक डियर का केस सलमान खान का कितना साल चला और बहुत सारी उसके अराउंड कॉन्ट्रोवर्सीज, तो सलमान खान की लाइफ के ऊपर ये मूवी बनाने का हक उन्हें किसने दिया? तो सलमान खान ने पहले तो बहुत ही प्यार से अपॉलजी मांग ली थी कि भैया दे दो माफ कर देंगे, लेकिन अब वो थोड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं कि अब तो बात होगी ना, पेपर पे ही बात होगी। हां जी सलमान खान आजकल जल्दी गुस्सा कर देते हैं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
4: एक्साइटेड।
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: बड़ी बड़ी मूवीज में छोटे छोटे रोल भी ना बड़े काम के होते हैं, और अगर आपने उसे ग्रैब कर लिया तो आपका पूरे साल का कोटा कंप्लीट हो सकता है। ऐसा मैं नहीं, ऋतिक रोशन मानते हैं, बिकॉज रजनीकांत जी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका कोई शाहरुख खान ही होगा जो छोड़ेगा। हाँ जी, आज ये ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, एंड पता चला है अंदर की खबरों से कि जेलर मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है ना, उसमें शाहरुख खान का एक की रोल था, लेकिन ड्यू टू मल्टीपल स्केड्यूल्स ये वो ऐसा वैसा तैसा, आपको पता है, ऋतिक रोशन अब उस रोल को ऑप्ट कर रहे हैं। हाँ जी, शाहरुख खान हटकर उनकी जगह ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। चलो भाई, आरजे नूपुर मसी मॉर्निंग शो पर कुछ और भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें आपको बताने वाली है, सो डोंट गो एनीवेयर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
0: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार, रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर।
3: आजकल लोग उम्मीद लगा रहे हैं किससे? रीजनल सिनेमा से। हाँ जी, रीजनल सॉन्ग से, रीजनल स्टोरीज से। और कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि बस यही कमाल दिखाएगा, यही मजेदार होगा, यही ये करेगा, यही वो करेगा। तो जब आप एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर देते हैं ना, तो नर्वस हो ही जाता है शख्स। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। देखो, नर्वसनेस की बात तो रही है, साउथ की बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी जाह्नवी कपूर जो है वो कर रही है, और अपने जमाने में उनकी मॉम श्रीदेवी ने भी अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी। तो रिसेंटली रामचरण स्टारर पेडी मूवी में अपनी जाह्नवी कपूर नजर आई, और ये मूवी भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक सवाल खड़ा हो गया कि जाह्नवी कपूर ने कितना अच्छा चार्ज किया है, किसमें, इस मूवी में। हाँ जी, 8 करोड़ रुपीज इन्होंने सिंगल हैंडली चार्ज किया है। एंड आई डोंट थिंक कि आज के टाइम पे बॉलीवुड में इन्हें इतने चार्जेस पे किए जा रहे हैं। तो ठीक है, फॉर अ वाइल लोग थोड़ा सा अपना डायरेक्शन अलग करके साउथ तक जा रहे हैं और कुछ करके दिखा रहे हैं। हाँ, डू यू थिंक सो? आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

देखो अब आपकी उम्र थोड़ी बढ़ चुकी है, अब आप गेम शेम खेलेंगे ना तो अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ हमने आपके आईक्यू लेवल को देखते हुए, आपकी नॉलेज को देखते हुए एक ऐसा गेम डिजाइन किया है कि आपको मजा आ जाना है यार। हाँ जी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आ चुका है आपके लिए द लायन सिटी चैलेंज, जिसमें आपका नॉलेज, आपका आईक्यू जीतने वाला है। हाँ जी, मतलब मल्टीपल कैटेगरीज, वो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, वो चाहे एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, एनीथिंग, अपना जो दिन रहता है, और मतलब हर तरह के सवाल जवाब से जुड़े हुए आपसे राउंड और प्ले वगैरह होंगे आगे अलग अलग लेवल। लेकिन फॉर अ वाइल इनिशियल लेवल पर अगर आपको इस गेम का हिस्सा बनना है और अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसमें आपको बहुत सारे कैश प्राइजेस और गिफ्ट्स रहें, तो सस्पेंस बरकरार रखते हुए आपको एक व्हाट्सएप मैसेज मैं करवाना चाहूंगी। आपको बस टाइप करना है लायन और हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर देना है 9151896 पर। आरजे यूनिपर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
5: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
2: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
1: ऐसा ही होता है यार, नेपोटिज्म ऐसा ही होता है। हाँ हाँ, आपको लग रहा है कि नहीं भाई, आजकल लोग जो है ना वो नेपोटिज्म को इतना हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको इक्वल मौका मिलता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म तो एग्जिस्ट करता है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज बताना चाहूंगी, अभी रिसेंटली आलिया भट्ट एंड शार्वरी स्टारर अल्फा मूवी जो है वो थोड़ी ट्रेंड में आ गई है कि बहुत जल्द ये मूवी रिलीज होने वाली है, इसमें ये होगा वो होगा, फीमेल ओरिएंटेड है, ऐसा है वैसा है, एक्शन है। लेकिन आलिया भट्ट एंड शार्वरी दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। अब आलिया भट्ट तो भट्ट साहब की बेटी है और शार्वरी थोड़ी आउटसाइडर है। तो जब मूवी का टीजर ट्रेलर कह लीजिए जब आया ना, तो उसमें शार्वरी दिखाई नहीं दी, पूरा का पूरा स्क्रीन टाइम जो है ना एक तरीके से आलिया भट्ट को दिया हुआ है। तो लोगों ने अच्छा खासा ट्रोल भी किया कि ऐसा ही होता है, मतलब बड़े लोग इस काम करने में ऐसा ही होता है। पर दूसरी तरफ डायरेक्टर्स का मानना यह भी है कि शार्वरी के रोल को थोड़ा दबा के रखा गया है, जो मूवी में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐड करेगा, जिस वजह से इन्हें इनफ स्क्रीन टाइम टीजर ट्रेलर में नहीं दिया गया है। अब सच्चाई क्या है ये तो मूवी रिलीज होने के साथ ही पता चलेगी नेक्स्ट मंथ। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: महापुरुष
2: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: मतलब सोच कर भी अगर आप सोचने बैठेंगे कि क्या ये दो एक्टर्स एक साथ काम कर सकते हैं, तो शायद आप सोच ना पाएंगे। लेकिन हाँ, रियलिटी निकल कर आ चुकी है। ये दो एक्टर्स जिनका कॉम्बिनेशन हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया, एक्चुअली में एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। हेलो हाय, मैं आरजे नूपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि रेखा जी ने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है और आप जिनके साथ इमेजिन कर रहे हो उनके साथ भी काम किया है। लेकिन रिसेंटली एक इवेंट में रेखा जी ने एक्सप्रेस किया कि वो आमिर खान के साथ काम करना चाहती थी और अभी भी चाहती है, लेकिन जिस मूवी में ये काम करने के लिए उतरी वो मूवी ही शेल्फ हो गई। हाँ जी, होल्ड पे चली गई और उस मूवी का नाम था टाइम मशीन। एनीवेज, ये इनकी विश लिस्ट अभी तक टिक ऑफ नहीं हुई है। क्या पता ये एक तरीका हो, एक पीआर स्टंट हो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को इंडिकेट करने का। यू नेवर नो ना, आपको पता है ना, बहुत क्लेवरली चीजों को ये रोस्ट करके, ट्विस्ट करके, ट्वीक करके हमें बता जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: ये अफवाह किसने फैलाई कि अनिल कपूर का जो बेटा है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ चुका है? ना ना ना ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ी चूजी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि देखो इज्जत पे बात नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा सब कुछ चलेगा। तो आई थिंक इसी मोड पर काम कर रहे हैं कौन? हर्षवर्धन कपूर, राइट? अनिल कपूर के बेटे। सो हेलो हाय, मैं आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अब अगर हम हर्ष की बात करें तो आखिरी बार आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 2022 में खार नाम की एक मूवी आई थी जिसमें ये नजर आए थे। और इन्होंने मैक्सिमम 4 मूवीज में छोटे छोटे बड़े बड़े काम कर रखे हैं। तो अनिल कपूर के बेटे गायब हो चुके हैं इंडस्ट्री से, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पे प्रूव कर दिया है कि नहीं, मैं बस प्रोजेक्ट्स को लेकर चूजी हो चुका हूं, लेकिन मैंने इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है। तो भैया पिताजी इस व्यापार में बहुत पहले से हैं और इतनी आसानी से ये प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे? आपकी गलत फहमी है यार। आज नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ बनी हुई थी। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश, योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
4: तुमको ले कर
3: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
4: मुझे चांद पे ले चलो।
3: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
4: रात अकेली है।
5: जोश में रहो।
6: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7 Live.
1: Hello, Namaskar, Hi Singapore, and welcome है आप सभी का Masti Hangout में। This is me, RJ Mugdha, live from Singapore. और बहुत खुशी हो रही है कि आज भी आप अपने दिन का जो एक हिस्सा है वो मेरे साथ और हम सब एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। वेल, इट्स 17th of June, यानी कि वेंसडे, और आज दुनिया भर में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट ऑब्जर्व किया जाता हुआ। दैट्स अ लॉन्ग नेम। नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि मतलब एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स का जो डिस्कशन हो रहा होगा, बैठे होंगे, लेकिन असल में ये दिन हमें एक बहुत सिंपल सी बात याद दिलाता है। यू नो व्हाट, हम रोज जिन चीज़ों को बहुत नॉर्मल समझ लेते हैं ना, उनकी वैल्यू अक्सर हमें तब समझ में आती है जब वो कम होने लगती है, जैसे कि ग्रीनरी, जैसे कि पानी, है ना। वैसे लाइफ में देखा जाए तो लाइफ ऐसी ही है ना, कभी एक खाली दोपहर आपको मिल जाती है, कभी फैमिली के साथ आप डिनर कर पाते हैं, कभी एक अच्छा दोस्त आपके साथ आता है, और कभी कभी एक कप चाय के साथ जो आपका वो 2 मिनट का वक्त है ना, वो भी आपको बहुत प्रेशियस लगता है, सुकून देता है। इन चीजों की अहमियत तब समझ में आती है जब ये नहीं मिलती है। तो आज के शो में भी हम बहुत सी बातें करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, और कुछ ऐसी बातें जो कि शायद आपके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर आए, और साथ में मेरे साथ बहुत सारा म्यूजिक तो होना ही है।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday, 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

सवाल है आपसे, आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो ज्यादा किस बात पे आप भरोसा करते हैं, अपनी मेमोरी पर, नेविगेशन ऐप पे, या फिर उस इंस्टिंक्ट पर जो कहता है नहीं नहीं नहीं नहीं शॉर्टकट नहीं यहीं से चलो, ऐसा है ना? देखिए टेक्नोलॉजी वाइज भी हमारी ड्राइविंग लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टेक्नोलॉजी खुद है, और अब लगता है रोड्स भी ना थोड़ी और ज्यादा स्मार्ट होने वाली है। सो बेसिकली सिंगापुर के नेक्स्ट जनरेशन ERP सिस्टम के रोल आउट से पहले कुछ नए फीचर्स जो है वो ट्रायल किए जा रहे हैं। सोचिए ERP गैंट्री आने से पहले अलर्ट आपको मिल रहा है, चार्जेस पहले ही स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, रोड साइड पार्किंग पेमेंट्स भी सिस्टम के थ्रू जो है हैंडल आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग बात टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, वो ये कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिएक्शन लगभग सेम ही होता है। पहले हम कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी, फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, इट्स अमेजिंग फैंटास्टिक, और फिर एक स्टेज आती है जब हम सोचते हैं यार इसके बिना मैनेज कैसे कर पाते हम, है कि नहीं? या कैसे चल रहा था इसके बिना कोई काम, अब ये नहीं होगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल एक वो GPS है ना उसकी तरह से, कॉन्टैक्ट रिपीट, बिल्कुल कुछ ऐसी चीजें जैसे कि GPS, या आप देखो तो कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट्स, ये जो ऐप्स हैं उनकी तरह जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी, रूटीन नॉर्मल हो गया है वो, बिल्कुल नॉर्मल, ये ना हो तो दिन अब नॉर्मल लगेगा। तो ERP2 ड्राइवर्स का जो एक्सपीरियंस है वो कितना चेंज करता है ये सब कुछ, ये तो देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि फ्यूचर अक्सर ना बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स के साथ नहीं आता है, वो छोटे अपडेट्स के साथ आता है।

0: सस्वियाकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीवन, दिस इज मी मुग्धा। आजकल मुझे चैलेंजेस का बड़ा शौक है, सो एक और छोटा सा चैलेंज है आपके लिए। आप जब घर से निकले या विंडो के बाहर खड़े हैं तो आप ना सिर्फ बिल्डिंग्स को मत देखिए, आप पेड़ों को देखिए। क्योंकि क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंगापुर में जो पेड़ हमारे रोड साइड्स पे, पार्क्स में, वॉकवेज में साथ में लगे हुए नजर आते हैं, वो रैंडमली एवं किसी ने नहीं लगा दिए हैं। देयर इज अ होल रीजन बिहाइंड दिस, राइट? कुछ शेड्स देने के लिए है, कुछ बर्ड्स और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए है, कुछ बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए है, और कुछ बस इसलिए है कि शहर थोड़ा और खूबसूरत लगे, जो लैंडस्केप है उसके लिए। ये तो आइलैंड वाइड 900 से ज़्यादा ट्री स्पीसीज जो हैं वो सिंगापुर जो है वहाँ पे लगे हुए हैं, और हर स्पीसी अपना एक अलग रोल प्ले करती है प्लांट्स और फ्लावर्स का। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। हम अक्सर किसी भी शहर को उसकी स्काईलाइन से पहचानते हैं, लाइक मरीना बे है, टॉल बिल्डिंग्स, फेमस लैंडमार्क्स, पर सोचिए अगर एक दिन सिंगापुर से सारे पेड़ गायब हो जाएं तो क्या ये शहर वही रहेगा जैसा हमें दिखता है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ना बैकग्राउंड में रहकर भी हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। एक रेन ट्री जो पूरी रोड पर छतरी जैसे आपको शेड देता हुआ चलता है, कहीं पे आपको पिंक फ्लावर्स से भरी हुई लेन नजर आती है, पेड़ दिखते हैं पिंक फ्लावर्स से भरे हुए, कहीं ऐसा पेड़ जो एक्चुअली बटरफ्लाइज के लिए घर है, हम उनके नाम नहीं जानते लेकिन वो रोज हमारी लाइफ को और बेटर बना रहे, और हमको दिखते हुए हमें याद रहता है, हाँ यार ये वाला पेड़ आ गया। अच्छा, इसीलिए मुझे ना एक कुछ कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। ये जो एक चीज़ है ना, ये शहर और उनका स्काईलाइन, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये हमको याद दिलाता है कि किसी शहर की खूबसूरती सिर्फ उस चीज़ में नहीं होती जो सबसे ज़्यादा नज़र आती है, कभी कभी उस चीज़ में भी होती है जिसके पीछे हम बिना सोचे समझे वहाँ से रोज गुजर रहे होते हैं। आज जरा ऊपर नजर डालिएगा, जरा नीचे नजर डालिएगा, हो सकता है कोई आपका फेवरेट पेड़ या कोई फूल पहली बार आपको दिखे, फिर सोचना कितनी मेहनत है इसके पीछे, है ना?

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: अच्छा सुनो जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा
5: हाँ जी जी
4: आधा केजी मसूर दाल
5: जी जी
4: काजू किशमिश ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं
5: जी जी
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर
4: क्या
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन डॉट कॉम ग्रोसरी एड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप
4: वाजी क्या बात जी
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर
6: सीधी बात बोरिंग है टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
7: सिंगापुर सच सच बताना क्या आप वो इंसान है जो क्विज शो देखते वक्त टीवी से पहले खुद ही जवाब दे देते हैं है ना करंट अफेयर्स एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स दुनिया भर की इंटरेस्टिंग बातें आपको बहुत नेचुरली याद रह जाती हैं और क्या आपको लगता है कि अगर मौका मिले तो आप एक रियल गेम शो में अपनी नॉलेज प्रूव कर सकते हैं और अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद ये आपके लिए ही है मस्ती मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज सिंगापुर का स्मार्टेस्ट गेम शो वेयर नॉलेज विंस और अब ना क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है ऑफिशियली वो शुरू हो चुका है पार्टिसिपेट करना इज वेरी सिंपल आपको ना दो क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस दिए जाएंगे लेकिन उसके पहले आपको रजिस्टर करना होगा दिस इज द बेसिक फर्स्ट स्टेप रजिस्टर करने के लिए आपको LION लिखना है और भेजना है 9151-8963 पर उसके बाद दो क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस आपके पास आएंगे एंड देन आपको उसका सही जवाब देना होगा ताकि आप आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाए तो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए क्वालिफिकेशन राउंड की तरह है याद रखिए इट्स नॉट जस्ट एन SMS कॉन्टेस्ट ये पहला कदम है प्रोफेशनली प्रोड्यूस गेम शो की तरफ यस लाइट कैमरा एक्शन ब्रॉडकास्ट जज क्विज सब कुछ है यहाँ पे सो बी अ पार्ट ऑफ इट वक्त है जो ज्ञान आपके दिमाग में भरा उसको प्रूव करने का Just to be a part of it, register करना है 9151-8963 पर और भेज दीजिए LION लिख करके इस नंबर पे. It's very easy. आगे easy होगा या ये नहीं मुझे नहीं पता पर ये सबसे आसान तरीका है register करना सबसे पहले, right? जल्दी करिए.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो, ऑफिशियली आर टू में एंटर हो चुके हैं हम। बॉलीवुड अपडेट्स के साथ शुरू करते हैं ये नया आर जो कि एंटरटेनमेंट की खबरों से लबरेज है, लबालब भरा हुआ है। एक वक्त था जब बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा ना अलग अलग बॉक्सेस में देखे जाते थे, रखे जाते थे। सिचुएशन नाउ हैज टोटली चेंज्ड। स्टोरीज लैंग्वेज से ज्यादा बड़ी हो गई हैं, जो कि एक्चुअली होनी भी चाहिए थी। व्हेन म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, व्हाई डू स्टोरीज हैव। अब इस ट्रेंड को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए ना हमारे बड़े प्यारे करण जौहर ने अनाउंस किया है कि उनका प्रोडक्शन मलयालम सिनेमा में भी एंट्री कर रहा है, एंड द फर्स्ट मलयालम प्रोजेक्ट होगा ओडिया, इफ आई एम सो सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस किया हूं, द एज ऑफ इल्यूजन, जिसमें के लीड रोल में अगर मैं आपको बताऊं कौन नजर आ रहे हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन और मंजू वॉरियर। फिल्म को राहुल सदासिवान डायरेक्ट कर रहे हैं और ये एक पैन इंडिया स्केल पर रिलीज होने वाली फिल्म है, ऐसा प्लान किया जा रहा है। सी व्हाट आई फील, स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट सिर्फ करण जौहर तो एब्सोल्युटली नहीं है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑडियंस ने सिनेमा को कितना चेंज कर दिया है। आज व्यूअर्स सब टाइटल से डरते नहीं है, लैंग्वेज बैरियर अब पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा, राइट? अगर स्टोरी अच्छी है तो वो मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब उसको अपना रहे हैं, एंड शायद इसी वजह से आज कोलैबोरेशंस ना पहले से ज्यादा एक्साइटिंग लगने लग गई है। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कोलैबोरेशंस पहले से ज्यादा एक्साइटिंग हो गई हैं। एक फिल्म मेकर मुंबई से है, एक स्टार केरला से है, ऑडियंस पूरे इंडिया की है, पैन इंडिया। ऑनेस्टली ये बॉलीवुड वर्सेज रीजनल सिनेमा, अब ये कहानी ये वाली कम हो गई है, इंडियन सिनेमा टुगेदर ज्यादा नजर आती है। देखना यह है कि ये फिल्म ऑडियंस को कितना इंप्रेस करती है, मेन पॉइंट तो यही है।
2: तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त,
3: मैं चीज बड़ी हूँ मस्त।
1: पर एक बात पक्की है, सिनेमा की दुनिया में बाउंड्रीज हर साल थोड़ी थोड़ी थोड़ी छोटी होती जा रही है, एंड दैट्स गुड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू, किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, रेडियो मस्ती 24/7
1: लाइव। हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। एक इंटरेस्टिंग बात आपने नोटिस की है, हम सब ना हेल्दी खाने की प्लानिंग बहुत बढ़िया से करते हैं, पूरा प्लान वैन बना लेंगे, चार्ट वार्ट बना लेंगे, लेकिन जब शाम को हल्की सी भूख लगती है या काम के बीच में से कुछ खाने का मन करता है, मंच करने का मन करता है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले कन्वीनियंस याद आता है, हेल्थ कहीं किनारे। अच्छा, दिस द रीजन की स्नैकिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, स्मार्ट स्नैकिंग एक्चुअली। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों चाहते हैं, देन जीजी मार्ट आप ही के लिए है। यहाँ पे अवेलेबल हैं क्रिशिबल नट्स आपके लिए, एंड दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन जो आपको स्मार्ट मंचर बना सकते हैं, मतलब स्मार्ट मंचिंग करने वाला एक शख्स। यहाँ पे क्रंची कैश्यूज हैं, रोस्टेड एंड सॉल्टेड कैलिफोर्निया आलमंड्स, पिस्टैचूज, हेजल नट्स, पम्पकिन सीड्स, मैकेडेमिया नट्स, मतलब असॉर्टेड नट पैक, सब कुछ है यहाँ पे। हर मूड हर क्रेविंग के लिए दे हैव एन ऑप्शन फॉर यू, कुछ ना कुछ। एंड मतलब सबसे अच्छी बात क्या है, क्रिशिबल प्रोडक्ट्स ना फार्म फ्रेश हैं, 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आते हैं, और पैकेजिंग इज इको फ्रेंडली। तो जो लोग बहुत इको फ्रेंडली सस्टेनेबल लाइफ जीने का शौक रखते हैं, उनके लिए तो ये सोने पर सुहागा है। यानी देखो क्या ना, गिल्ट तो कम हो जाएगा एंड गुडनेस तो ज्यादा रहेगी। और अगर आपको ट्रेडिशनल फ्लेवर्स पसंद है तो यहाँ जीजी मार्ट पर अवेलेबल है गुलकंद, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। जामुन का भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप वहां जाके खुद देखिए, आपको पता लग जाएगा। सो बेसिकली सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। तो अब चाहे हेल्दी स्नैकिंग हो, ट्रेडिशनल वेलनेस हो, या चाय के साथ एक स्वीट इंडल्जेंस, जीजी मार्ट में हर क्रेविंग के लिए कुछ ना कुछ है। आपको बस ggmartonline.com पे जाना है, सिंपल, कहीं और नहीं, घर से भी बाहर नहीं जाना है, सिर्फ ggmartonline.com पे जाना है।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। देखो क्या ना, मैं तो स्टूडियो में रहती हूँ तो मैं अक्सर लेट नहीं होती, मतलब स्टूडियो में रहती हूँ सेंस की शो के वक्त। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो अपने साथ कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर के आते हैं, बहाना बनाते रहते हैं। कितनी बार आपने बहाना बनाया होगा लेट होने का, अरे यार बहुत ट्रैफिक था, अरे यार बहुत जैम था, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया ना। हम सब ने कभी ना ये लाइन यूज जरूर किए, कई बार तो मैंने भी करी है, नो डाउट। उसका रीजन मेरे पास वो नहीं था जो इनके पास है। खैर, बॉलीवुड से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो कि ट्रैफिक एक्सक्यूजेस को थोड़ा सा वीक बना देती है। फराह खान जो हैं डायरेक्टर मोहतरमा, रिसेंटली उन्होंने बताया कि 30 मार खान की शूटिंग के दौरान जो लोकेशन थी वो मुंबई से काफी दूर थी, तो पूरे कास्ट एंड क्रू ने डिसाइड किया हम आने जाने के बजाय वहीं पे रह लेंगे जहां पे शूटिंग चल रही है। पर अक्षय कुमार ने डिसाइड किया कि नहीं, वो अप डाउन करेंगे, वो आएंगे और जाएंगे, वो अपने घर जाते और वापस आते शूट के लिए। कमाल की बात है कि वो जाते और वापस बिल्कुल वक्त पर आते, टाइम, पिन पॉइंट टाइम। पर वो ऐसा कैसे कर पाते थे? मुंबई का ट्रैफिक, इंडिया में मुंबई का ट्रैफिक, ओ माय गॉड, कैसे? उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। जी, वो अलग बात है कि फराह ने मजाक में ये बोला कि भैया पूरा बजट तो हेलीकॉप्टर के लिए खा गया, पर देखने वाली बात है कि इसके बावजूद वो हमेशा वक्त पे पहुंचते थे। हाँ, ये अच्छी बात है। सी क्या है ना, कई लोग प्रॉब्लम्स का रीजन ढूंढते हैं, कई बार प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने वाले भी आपको आसपास मिल जाते हैं। ट्रैफिक हर जगह होता है, बिजी स्केड्यूल हर किसी का होता है, एक्सक्यूजेस हर कोई दे सकता है, लेकिन एक्सक्यूजेस का आउटकम कौन बेहतर तरीके से निकालता है वो देखने वाली बात होती है। पर मेरा एक सवाल, अगर मैं कभी वापस मिलूं फराह से, अगर मेरी बात हो, कोई पूछना मेरे बिहाफ पे, अक्षय वहां क्यों नहीं रुक गए?

0: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी?
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live.
1: Hi Singapore.
2: सवाल बहुत पूछती हूँ ना मैं,
1: आई नो,
2: पर कुछ लोगों को सवाल पूछने ज्यादा सवाल का जवाब देने में मजा आता है। हर फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसको लोग गूगल कहते हैं, हर सवाल का जवाब। किसी को कोई कैपिटल सिटी कैपिटल नहीं आता है, उसको पूछ लो। किसी को कोई एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, कोई फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, कोई जगह, कोई करंट अफेयर, कोई स्पोर्ट्स, कुछ भी रैंडम, वो गूगल है। गूगल के पास जाओ, मतलब वो बंदा गूगल है, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। और अगर आप अभी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात सुन के, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आपके ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त है, या तो वो दोस्त आप खुद ही है। सी, अगर नॉलेज आपके पास है, आपका हैबिट है, क्यूरियोसिटी आपकी ताकत है, और फैक्ट्स जानने का शौक आपको कभी बोर ही नहीं करता, तो वक्त आ चुका है टैलेंट को स्पॉटलाइट में लाने का। द लाइन सिटी चैलेंज सिंगापुर का स्मार्टेस्ट गेम शो है जो आपके लिए है। इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल क्विज जो कि SMS के थ्रू खेलेंगे, इट्स अ प्रॉपर गेम शो एक्सपीरियंस। स्पॉटलाइट, हॉट सीट, सवाल जवाब, प्राइजेस, ब्रॉडकास्ट, बकायदा शूट होगा ये। हाँ, ये ऑनलाइन कोई क्विज कॉन्टेस्ट नहीं चला रहे हैं, इट्स अ प्रॉपर गेम शो एक्सपीरियंस। एक्साइटिंग कैश प्राइजेस हैं, आपका इंतजार ये सब कुछ कर रहा है अगर आप उनमें से एक हैं तो। पार्टिसिपेट करना इज वेरी सिंपल, द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट रजिस्टर्ड। 9151893 पर आपको LION लिखकर भेज देना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन राउंड आएगा, डिटेल्स आपको भेजी जाएंगी, दो सवाल उसका जवाब, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे आप। पर सबसे पहले करिए रजिस्टर खुद को LION और भेजिए इसको 9151893 पर, क्योंकि ये आपने कर लिया उसके बाद तो हमारी टीम है ही आपको आगे गाइड करने के लिए। Yes. और इतना बताने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो पता है इस कहावत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है चिराग तले अंधेरा, ऑप्शन बी है अंधेरे तले चिराग, ऑप्शन सी है चिराग तले चिराग, और ऑप्शन डी है अंधेरा तले अंधेरा। सही जवाब ढूंढ के सोचते रहिएगा क्या करना है।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7
1: Live. Hi Singapore, I feel दुनिया को सरप्राइजेस बहुत पसंद है। अगर कोई शेफ अचानक कोडिंग करने लगे तो सरप्राइज, अगर कोई प्रोफेसर रैप करने लगे सरप्राइज, और अगर साड़ी पहन के एक महिला माइकल जैक्सन का आइकॉनिक डांस पर ठुमके लगाए, मतलब डांस करने लगे तो सरप्राइज सरप्राइज। इंटरनेट है ना, रुक कर देखेगा भी और अमेजिंग मूव्स को अप्रिशिएट भी करेगा। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जहां पे एक महिला ने साड़ी पहन के माइकल जैक्सन के जो फेमस जो मूव्स है ना उनको परफॉर्म किया है। लोग उनकी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस एंड द स्मूथ परफॉर्मेंस, उसके तो फैन ही हो गए हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट द डांस, स्टोरी उस मोमेंट की है जब कोई इंसान एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है, बाउंड्रीज से आगे बढ़ता है। हम सबके दिमाग में ना छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये ऐसा दिखता है तो ये ऐसा करेगा, ये प्रोफेशन है तो ये हॉबी होगी, ये आउटफिट है तो ऐसा परफॉर्मेंस होगा, और फिर कोई आता है एक मिनट में सारे अजम्पशंस को हिला के रख देता है। शायद इसीलिए ऐसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि लोग ना लेबल से ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, और कभी कभी सबसे मेमोरेबल चीजें ना परफेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बल्कि वो मोमेंट होता है जब हमें प्लेजेंटली कोई चीज सरप्राइज कर देती है।
2: बेखबर बेखबर वो कश्तियां हमारी टकरा गई,
1: कुछ ऐसा मिले तो रुक के देखना जरूर। This is me, Mugdha. Stay tuned.

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाँ, मुझे लगता है दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, और इनफैक्ट दुनिया दो तरह के लोगों में डिवाइड हो चुकी है। एक वो जो वेकेशन पर जाते ही फोन को साइलेंट पे कर देते हैं, ऑफिशियल ईमेल्स इग्नोर कर देते हैं और सच में अपनी लाइफ का वो ब्रेक एंजॉय करते हैं, एंड दूसरे वो जो हॉलिडे पर भी लैपटॉप के साथ जाते हैं, और अगर

कई बार कभी कभी लगता है हम वेकेशन पर जाते ही नहीं है, बस अपने ऑफिस का बैकग्राउंड जो उसको बदल देते हैं। लाइफ ऐसी हो चुकी है, डेस्क की जगह पे बीच आ जाता है, कॉन्फ्रेंस रूम की जगह पे एयरपोर्ट या आपका ड्रॉइंग रूम हो जाता है, एंड इन दिस केस सहारा डेजर्ट और कैमल है। शायद इसी को मॉडर्न लाइफ की रियलिटी कहें तो गलत नहीं होगा, इसी में कहीं छुपी है ये। टेक्नोलॉजी ने हमें ना दुनिया के किसी भी कोने से काम करने का फ्रीडम दिया है, और हम एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते, क्या कर सकते हैं। चैलेंज ये है कि कभी कभी हमें खुद की परमिशन खुद ही खुद को देनी पड़ती है, थोड़ा सा ऑफलाइन होना है तो होना है।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: मैंने कहा था ना मुझे सवाल पूछने की बड़ी बुरी आदत है। एक सवाल, क्या आपने कभी रेडियो सुनते सुनते सोचा है यार ये RJ कितना नेचुरली बात कर लेते हैं ना, या फिर किसी इवेंट पे किसी होस्ट को स्टेज पे देख के आपको लगाओ काश मेरे पास भी ऐसा कॉन्फिडेंस होता। सच कहूं, हर कॉन्फिडेंट वॉइस की शुरुआत जो है ना कॉन्फिडेंस से नहीं होती है, शुरुआत होती है एक सिंपल डिसीजन से कि मुझे ट्राई करना है। आज जो लोग रेडियो पर सुनाई देते हैं, इवेंट्स होस्ट करते हैं, पॉडकास्ट चलाते हैं, ऑडियंस के सामने एफर्टलेसली बोलते हैं, कभी वो भी नर्वस होते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि और था कि उन्होंने अपनी वॉइस को एक चांस दिया। और अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में और बेहतर होना चाहते हैं, रेडियो प्रेजेंटिंग और होस्टिंग की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आया है द RJ अकेडमी, अ प्लेस वेयर योर वॉइस, योर स्टेज एंड योर फ्यूचर आपको एक साथ मिलते हैं। अकेडमी का फ्लेक्सिबल हाइब्रिड मॉडल है ऑनलाइन और इन स्टूडियो, जो कि आपको लर्निंग और इन स्टूडियो आने का पूरा फोकस करेगा, एक्सपीरियंस देगा। ट्रेनिंग बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक की डिजाइन की गई है, इंडिविजुअल फोकस सिलेबस है, एंड द बेस्ट एंड एक्साइटिंग पार्ट इज सेलेक्टेड ट्रेनीज को रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लाइव होस्टिंग का मौका भी दिया जा सकता है। सो ये जो प्रोग्राम है इट्स फॉर 14 इयर्स एंड अबव के बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। यू कैन कम एंड पार्टिसिपेट, बट हाउ, कैसे करेंगे आप पार्टिसिपेट? आपको एक इंट्रोडक्शन ईमेल लिखना है info@radiomasti.com.sg पर। वील रीड दैट इंट्रो एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब इंट्रो मेल, एंड देन वी विल सेंड यू एन एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि कभी कभी ना लाइफ बदलने के लिए माइक्रोफोन नहीं चाहिए होता है, एक पहला कदम चाहिए होता है जो हम आपको दे रहे हैं। माइक्रोफोन तो उसके बाद आप खुद हासिल कर लेंगे अगर आप में करने की क्षमता होगी तो, और मुझे पता है कि है। आप पहला कदम उठाइए info@radiomasti.com.sg पर, अपना एक इंट्रोडक्शन लिखिए और मेल करिए, टप सेंड।

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: वेल, और इसी के साथ आज का मस्ती हैंग आउट हमारा यहीं पर खत्म होता है, वक्त यहीं तक। आज हमने काफी इंटरेस्टिंग बातें की है ना, हमने बातें उन लोगों की जो वेकेशन पे भी अपना काम बंद नहीं कर पाते, उनकी बातें जो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए लेकिन काम उनका पीछा छोड़ता नहीं है। हमने देखा कि कभी कभी लोग हमें तब सबसे ज्यादा सरप्राइज करते हैं जब हम उनके एक्सपेक्टेशंस तोड़ के, एक बॉक्स का बैरियर तोड़ के बाहर निकलते हैं। हमने ये भी समझा कि सक्सेस सिर्फ रिसोर्सेज की नहीं, डिसिप्लिन की भी कहानी होती है, और बीच बीच में बहुत सारा नॉलेज, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटीज, हमने सारी बातें करी है कि नहीं। लेकिन अगर आज की पूरी शाम से एक बात आपको साथ लेकर जानी हो तो वो शायद ये है कि दुनिया रोज हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है, कभी कोई न्यूज स्टोरी से, कभी कोई वायरल वीडियो से, कभी किसी स्ट्रेंजर का कोई एक्सपीरियंस, और कभी एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन, है ना। इसीलिए क्यूरियस रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे जरूरी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का सफर आपको पसंद आया होगा और मेरी कंपनी ने आपके इस वक्त को जो है और ज्यादा खूबसूरत बनाया होगा। दिस इज मी RJ मुग्धा, आपसे इजाजत लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए, यानी याद रखिए कल एक नया दिन होगा, नए एक्सपीरियंसेस होंगे और फिर किसी अगले शो में हमारी मुलाकात भी होगी। तब तक के लिए जरा बाय बाय, शब खैर सिंगापुर, एंड थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ मस्ती हैंग आउट। लव यू ऑल।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
4: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
6: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो

0: एक केजी आटा।
1: हाँ जी जी।
0: आधा केजी मसूर दाल।
1: जी जी।
0: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
1: जी जी।
0: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
0: क्या जी?
1: GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, checkout करो और grocery at your doorstep.
0: वाह जी, क्या बात जी?
1: Order today from GG Mart, your personal grocer.
2: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही RJs आएंगे. पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: डीजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। DJ.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning.
6: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
7: Musti Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: All music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: अर्जुन आएंगे
0: न? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
4: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
5: आई लव यू रसना।
4: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Masti 24/7 Live.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20।
1: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार।
4: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Josh
5: mein raho. Mere Karan Arjun aayenge.
1: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Fir haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: हाँ जी हाँ जी, वो वक्त आ चुका है 5:00 जब हो चुके हैं 4 मिनट. वेंसडे वाला दिन, मिड वीक बिल्कुल पहुंच चुके हैं और ये आवाज उसी की है जिसकी आप सोच रहे हैं. मैं अंतरा यहाँ पर बिल्कुल पहुंच चुकी हूँ. गुड इवनिंग, नमस्ते. एंड शुरू हो चुका है मिड वीक ब्लूज. भाई 17 तारीख हो गई है, जून का महीना मिड हो गया है वीक. एंड सौंधी सौंधी वीकेंड की खुशबू जो है वो आनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. वेंसडे को तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फिर हम थर्सडे को तो मानते ही नहीं है. थर्सडे ऐसा लगता है कि मतलब स्मूथ सा चला जाएगा और फिर हम फ्राइडे को ये इट्स फ्राइडे करते हुए बिल्कुल पहुंच जाएंगे. बट वेल, फिलहाल के लिए तो वेंसडे का जो है माहौल यहाँ पर बनाते हैं. और ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम ऑल द अमेजिंग थिंग्स विच वी विल टॉक अबाउट, देर इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग गिव अवे ऑल्सो विच यू कैन विन ऑल्सो. बट हाउ यू कैन विन ऑल्सो, उसके लिए भी of course you have to stay tuned to Radio Masti 24/7 live. Yes, I've got a hamper to give away. But उसके लिए आपको अपनी जो है यादों की डायरी और या फिर यादों के पिटारे में से जो है एकदम एक नगीना निकालना पड़ेगा. अब क्या है, क्यों है, कैसे है, अब तो अभी तो हम आए हैं. अभी हम अपनी चाय का सिप लेंगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, गाने वाने सुनेंगे, उसके बाद जो होगी होगी हमारी पार्टी यहाँ पर शुरू. वेल वैसे भी जो है बड़ी सारी चीजें चल रही है भाई दुनिया में, आस पास आगे पीछे ऊपर नीचे. सो मैं सारी चीजों को थोड़ा सा इकट्ठा और ऑर्गेनाइज करती हूँ यहाँ पर. तब तक के लिए आप जो है दो मीठे मीठे गाने सुनकर एकदम वापस आए, बस इतनी सी है हमारी गुजारिश. That's what Dagla Gana is saying to you on Radio Masti 24/7 live. Good evening.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: 3, 2, 1।
3: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
5: Paid friendships. Oh my God. Okay. यही सुनना शायद बाकी रह गया था। भगवान, कहा हो तुम। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ 5:00 हो चुके हैं 18 मिनट। मिडवीक ब्लूज आप सुन रहे हो। भाई, ओरी का नाम सुना ही होगा आपने, और सुना नहीं होगा तो इस बंदे की शक्ल तो कहीं ना कहीं आपने देखी ही देखी होगी। इनका एक्चुअली में अगर आपको नहीं पता है तो इनका नाम है ओरहान अवतरामणि। ये कुछ नहीं से कुछ तो बन ही गए हैं, एंड सडनली बन ही गए हैं, राइट? सो ही हाउ डू यू थिंक ही मेक्स मनी? ओके, एक रील अपेरेंटली उनको 76 लाख उनको जो है दिला गई थी। इट इज दैट अमेजिंगली वेल ही इज डूइंग अपेरेंटली, इज लग तो नहीं रहा है। सो वेल, उनका बिजनेस मॉडल ही पेड फ्रेंडशिप पे चलता है, दैट्स व्हाट ही यूजुअली सेज। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये ब्रांड कोलैबोरेशंस एंड ये काफी लुक्रेटिव है। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इनके इनकम का कम्स फ्रॉम व्हाट ही कॉल्स इट एज, हेलो, या पे सबके हेलो वाले शुरू हो गए, ही कॉल्स अस पेड फ्रेंडशिप्स। इवेंट अपीयरेंसेस तो है ही है। तो भाई, क्लाइंट्स जो है इनके, इनको हायर कर सकते हैं टू अटेंड द लंचेस एंड द डिनर्स एंड द वेडिंग्स एंड द बर्थडेज एंड द अदर सोशल गैदरिंग्स, जहां पे ये मिंगल करते हैं गेस्ट के साथ। ही टेक्स फोटोज एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द इवेंट एक्सपीरियंस। एंड ये अपीयरेंसेस जो है इस तरह के इवेंट्स में कैन कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 15 लाख to 25 लाख, डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन। सो यू कैन बाय मी फॉर लंच, डिनर और योर वेडिंग और योर बर्थडे। एंड ही ऑल्सो सेड दैट पीपल आर एसेंशियली पेइंग फॉर द एक्सपीरियंस दे आर हैविंग ऑफ हैविंग हिम एट देयर इवेंट। मैं जानना चाहती हूँ कौन दे रहा है ये 15, 25, 76 लाख और का एक्सपीरियंस। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर देम, मतलब सिंसियरली मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, और मैं उन्हीं से पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया तो हो ही सकता है कि कुछ और इधर की उधर हो जाए। नहीं, बट आई हैव डेफिनेटली, एंड यू नो दैट, राइट? जो मुझे अभी सुन रहे हैं कि आई हैव ऑब्वियस क्वेश्चंस, बिकॉज यू ऑल्सो हैव दोज क्वेश्चंस टू आस्क कि कौन दे रहा है 15 लाख, कौन दे रहा है 25 लाख एक्सपीरियंस के लिए। बट दे रहा है लोग, वो जो हाथ रख के लोगों के छातियों पर ऐसे करके हाथ रख के फोटो खिंचाता है, उसके लोग दे रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, माई डियर फ्रेंड्स। भाई, इसने जो सही नेटवर्किंग और कनेक्शन से बना रखा है, दिस इज व्हाट इज पेइंग हिम। मस्त चीज, मस्त, सही है। गुड इवनिंग।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning.
6: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
7: हाँ जी जी,
6: आधा kg मसूर दाल,
7: जी जी,
6: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
7: जी जी।
6: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
7: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
6: क्या जी?
7: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
6: वाजी क्या बात जी।
7: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
8: बाजू
9: ट्रैफिक अपडेट।
10: वेलकम बैक। पहले तो देती हूँ ट्रैफिक अपडेट, उसके बाद बताते हैं आगे की बात। 5:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, मिड वीक ब्लूज चल रहा है ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। इस वक्त आपको मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन AYE टुवर्ड्स MCE बिटवीन लोअर डेल्टा रोड एंड अलेक्जेंड्रा रोड। फिर एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन बुकतमा रोड टुवर्ड्स वुडलैंड्स आफ्टर इवेंट्स रोड, अवॉइड लेन नंबर 3। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन KJE टुवर्ड्स BKE अचुआचू खांग वे एग्जिट। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट बाय जीजी मार्ट का। अभी जो आप सुन रहे हो, काफी टाइम से जीजी कर रहे हैं, हम लोग भी बताए जा रहे हैं आपको कि भाई जीजी मार्ट online.com पर जाकर यू कैन यू नो एक्सप्लोर देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर इज सो मच, राइट। ये जामुन ट्रायंगल्स के बारे में आजकल हम लोग बात कर रहे हैं, नॉट ओनली दैट गुलकंद के बारे में बात कर रहे हैं, नट्स कृषि वाल नट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग आम के बारे में बात कर रहे थे। बट आज की डेट में बिकॉज फादर्स डे इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो भाई कुछ ऐसा है कि हमने कहा यादों की अलमारी को जरा खोलिए और उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी या फिर कोई बहुत ही फनी सी जो है अपने डैडी के साथ की मेमोरी जो है हमारे साथ शेयर करिए। एंड नाउ इट कैन बी अबाउट द मार्केट आल्सो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट। ठीक है, एक मैं अपना अगर बताऊं तो आई यूज्ड टू वेट फॉर माय डैड। तो पेजर जो होता था ना, पेजर आपको याद है ना, उसमें आप एक लिमिटेड यू नो कैरेक्टर्स में आप चीजें, तो कभी भी कुछ बाहर से चाहिए होता था ना, तो वहां पे हम पेजर में उनको भेज देते थे एंड देन उसके बाद होता था इंतजार, है ना। हर घंटे पे लगता था कि डैडी वापस

0: लेकिन वैसा नहीं होता था, वो क्यूरियोसिटी में बार बार जा रहे खोल रहे हैं, मायूसी से वापस आ रहे कि अरे यार अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, और जैसे ही आते थे ऐसी खुशी की लहर दौड़ती थी कि यस यस आ गया, हमारा सामान भी आ गया। एंड मोस्टली ये खाने का सामान होता था कि समोसा ले आओ, कुछ ले आओ, कुछ ले आओ। क्या प्रैक्टिस भी हो जाती थी, है नहीं कि छोटे में जो भी कहना है वो लिमिटेड वर्ड्स और कैरेक्टर्स के में करके ही उसको भेजना है। सो वेल, इस तरह की और इससे भी अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर कोई बहुत ही फनी कहानी जो है आपको अगर याद आती है तो 9158963 पर आप भेज दें। लेट्स सी कि आज हु स्टैंड्स अ चांस टू विन दिस जीजी मार्ट का हैम्पर। तो जितने प्रोडक्ट्स हम बता रहे थे ना उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे ट्राई करने के लिए, है ना। गुड इवनिंग।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराप के साथ और 5:37 हो चुके हैं यहाँ पर स्टूडियो क्लॉक में. एंड बड़ा ही एक अजीब सी फीलिंग आती है जब जिन जिन लोगों को हम सुन के बड़े हुए हैं एंड यू नो उन लोगों के गाने अभी भी हम सुनते हैं एंड देन सडनली वी गेट दिस काइंड ऑफ न्यूज कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है और ये सारी चीजें लगती है. सी ऑफ कोर्स टाइम्स हैव पास्ड बाय राइट. कैसा एक इमेज होता है ना सिंगर्स के लिए और सेलिब्रिटीज के लिए हमारे दिमाग में कि ये क्योंकि हमेशा ही अच्छे लाइट में देखा है, हमेशा ही वैसा देखा है, तो इनको तो क्या ही हो सकता है, इनको तो कुछ हो ही नहीं सकता. बट आप जिंदगी की रियालिटी से कब तक भागते रहोगे दोस्त, बस वही बात आ जाती है घूम फिर के. बट वेल यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी सोनू निगम को. आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच्ड हिज लेटेस्ट सोशल मीडिया पे इनका एक वीडियो जो है वो आया हुआ है एंड वेर ही इज टॉकिंग अबाउट दैट व्हाई वी आर नॉट सीइंग हिम परफॉर्मिंग और सिंगिंग अ लॉट दीज डेज. सो ही मेंशन दैट उनके जो नर्व्स हैं दे आर काइंड ऑफ पिंच्ड एंड ही सेड दैट आई हैव बीन टेकिंग MRI एंड CT स्कैन्स फॉर अ वीक नाउ. बहुत सारे मेडिसिन चल रहे हैं मेरे. फिजियोथेरेपी जो मेरी थी दैट वॉज वेरी वेरी पेनफुल. सो आई एम स्टिल टेकिंग पेन किलर्स एंड ड्यू टू दैट माई throat is also a little heavy due to which jo hai मैं बहुत ज्यादा कोई भी चीज कमिट नहीं कर रहा हूँ या फिर आई एम नॉट डूइंग माई टूर्स एंड एवरीथिंग. सो वेल हेल्थ कंसर्न है एंड हर किसी का कोई ना कोई एक वो पैच और वो चीज आता है एंड वी रियली रियली होप दैट ही गेट्स बेटर. भाई सोनू ने एक गाना बता दो आप, मतलब आई डोंट इवन नो हाउ मेनी, मतलब कुछ हजार से ज्यादा लाखों से भी ज्यादा इन्होंने गाने गाए होंगे एंड देयर इज नो अदर सिंगर लाइक सोनू निगम. सो एकदम दिल से ऐसे आवाज निकालते कि यार सोनू सर आपका बस जल्दी से ठीक हो जाओ, है ना, फिर आप अपना टूर वूर करो अच्छे से, मतलब बहुत ही मस्त हो जाए मामला. आई क्लियरली रिमेम्बर जब मैं सिंगापुर आई थी सोनू निगम डिड दिस कॉन्सर्ट with Atif Aslam. I don't know kya aap kehte hain, this was such a brilliant concert that was. So tab maine join bhi nahi kiya tha Radio Basti, like it is that old and it was amazing. Amazing. Dono singers amazing, but yeah. So Sonu Nigam ji, I hope you get well soon. Seriously, from the bottom of my heart. Good evening.

0: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
3: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
4: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
5: Check it out. Josh Mehra.
3: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Musty 24/7. Our mood change kare.
6: If you haven't told me about your favorite पापा के साथ मार्केट वाली मेमोरी, देन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट एंड टेल मी. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर चल रहा है मिड वीक ब्लूज, एंड नो ब्लूज एट ऑल. हमें कभी भी ब्लूज नहीं होते, एंड स्पेशली वेंसडे वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं. हमारे सारे उड़ जाते हैं, हम उड़ा देते, उड़ भी नहीं जाते, हम उड़ा देते, कहते हैं कि भाई आज तुम मत ही मिलो, ठीक है, ट्यूजडे तक ही तुम्हारा साथ काफी था. जैसे तैसे करके हम यहाँ पर पहुंच ही गए हैं. बट वेल यस भाई, हम एक बहुत ही खूबसूरत सा हैम्पर जो है जीजी मार्ट का बना चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आप में से कोई एक जो है वो ये हैम्पर लेकर जाए. बट बात ही इतनी जो है इतनी प्यारी सी है, और डे इतना प्यारा सा है. इट इज अ फादर्स डे जो कि संडे को है, एंड इट्स सच अ, इट्स नॉट दैट भाई, एक तो ऑफ कोर्स दिस इज अ फैक्ट दैट एवरी डे इज फादर्स डे, कोई एक दिन जरूरी नहीं है. बट देन जब एक दिन दिया है तो व्हाई नॉट ऑफ कोर्स डू समथिंग स्पेशल ऑन दैट. सो वेल आप बिल्कुल ggmartonline.com का ये जो है हैम्पर जीत सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये जो जामुन ट्राइंगल्स है, और उसके बारे में कितनी सारी हमने बात कर दी कि यू नो इट्स सच अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग टू हैव एट होम, एंड इसको आप रखोगे तो लोग आपसे आके पूछेंगे कि ये, एंड द गुलकंद आई वॉज टॉकिंग अबाउट, एंड ऑल्सो द कृषि बल के जो नट्स वगैरह जो हम बात कर रहे हैं, सो ऑल ऑफ दीज एक्चुअली अगर आप हैम्पर जीत जाते हो यू विल गेट टू ट्राई. बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेल मी अ वेरी फनी और एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है आपके डैडी के साथ. तो इस कहानी में आप भी होने चाहिए, आपके डैडी, ये दोनों कैरेक्टर्स तो होने ही होने चाहिए. अब वो मार्केट जाते हुए, मार्केट से वापस आते हुए, या फिर एनीथिंग व्हिच व्हेन आई टॉक अबाउट इट एंड यू आर लाइक ओके दिस इज गोइंग टू बी फन, ओके सुनो अंतरा, लेट मी टेल यू अबाउट इट. Tell me all. I am all ears. And you know, कुछ हो ना हो, ये सब बातें करते हुए और यादें ताज़ा करते हुए चेहरे पर एक smile और दिल में एक warmth की जो feeling है वो definitely आ जाएगी. So, if not for the hamper, but for feeling that way, do it. 9151-8963 पर. Yes? Tell me all.

0: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज़ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: छह बजे को इस पार आपका स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मिडवीक ब्लूज. आप सुन रहे हैं, मैं हूं अंतराप के साथ यहाँ पर. गुड इवनिंग, नमस्ते. अगर अभी अभी आपने इसी वक्त ट्यून इन किया हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ 5 बजे से यहाँ पर शो शुरू हो जाता है. जस्ट इन केस आपको ऐसा लगा हो कि नहीं अभी तो यह आई है, नहीं ऐसा नहीं. वेल भाई, रानी नहीं राजा की बात होगी. आजकल करंट क्रिकेट में राजा साहब, राजा बाबू, या फिर आप प्रिंस ऑफ क्रिकेट जो है इनको बुला सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी. कौन नहीं है जो इसके बारे में बात नहीं है. जिसको नहीं भी पता है ना क्रिकेट के बारे में, वो इस 15 साल के लड़के को जानता है कि भाई कोई तो बहुत ही कमाल कर रहा है. बच्चा सा है, बट देन ही इज प्लेइंग एब्सोल्युटली अमेजिंगली वेल, एंड पीपल नो हिम बिकॉज ऑफ हिज फियरलेस काइंड ऑफ बैटिंग. भाई डर नहीं है बंदे को किसी का, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वालिटीज वन कैन हैव, राइट. अब हाल ही में हुए कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में भी आपको पता होगा कि जब इन्होंने अभी जो है श्रीलंका की टीम के साथ मैच खेला और उसके बाद इनकी हो गई कहा सुनी, उसके बाद लोग ने पता नहीं क्या क्या. एक तो ये सारी चीजें जब ये सोशल मीडिया पे आती हैं तो लोगों के पास तो फ्री हैंड है ही, वो तो बोलने के लिए बैठे हुए हैं कि अरे देखा हमने तो कहा था, ये तो एरोगेंट हो गया. नोबडी वांटेड टू नो द फुल स्टोरी एज आई वाज सेइंग कि भाई पूरी कहानी जानने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है. पहले वो सिर्फ दो चार आपके आसपास लोग हुआ करते थे, अभी ये पूरी जनता हो गई है जस्ट नॉर्मली. बट एनीवेज, हैविंग सेड दैट, भाई उसी दिन की ये बात है कि कुछ बिल्कुल ऐसा हुआ कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद ये चेंज वेंज करके ये बच्चा अपना वापस जा रहा था. बट उनको पता, वैभव को पता चला दैट फॉर्मर श्रीलंका के कैप्टन अनुरा जो है उनका नाम है, ही वाज वेटिंग आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम काफी देर से, मतलब घंटा डेढ़ घंटा जो है वो बाहर बैठ के उसका, वैभव सूर्यवंशी का वेट कर रहे थे बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट दिस बॉय. दिस वेटरन क्रिकेटर जो है ही प्रेज्ड इस टीनेजर का फियरलेस बैटिंग एंड एडवाइज्ड हिम कि भाई डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करो, हम्बल रहो, सिर्फ फोकस करो क्रिकेट पे, बाकी जो कोई कुछ भी कह रहा है तुम्हें उससे कुछ लेना देना रखना ही नहीं है. अपना पैशन है उसको फॉलो करो, पैशन के लिए ही जियो. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट you know bit of advice anybody could have you know given and coming from you know someone like him. अमेजिंग, सही में किसी की नहीं सुनो. जब आपको पता है इफ यू आर गुड देन जस्ट मूव अहेड, या स्टे हम्बल बट कीप मूविंग अहेड, फोकस. क्या लोगों का काम तो कहना ही है. ये नहीं रुकने वाले, ये तो थमने नहीं वाले, तो हमें भी नहीं रुकना चाहिए, है ना. Make sense. I think Dear Masti show is doing really well on most of us, at least me. Good evening.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
0: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
6: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Musti 24/7. Aao, mood change kare.
7: That's right, यही है उस शो का नाम जिसको हम कहते हैं मिडवीक ब्लूज़। मैं अंतरा आपके साथ, 6:17 और लायन सिटी चैलेंज है हमारे उस गेम शो का नाम जिसकी काफी हर कोई बात कर रहा है। बात इससे पहले कि भाई लास्ट डेट यहाँ पर आए, आप अपना पहला कदम बिल्कुल बढ़ाए लायन सिटी चैलेंज की ओर। भाई इट्स वन ऑफ इट्स काइंड गेम शो। एक बार अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद भाई बहुत सारे देखो स्टेप्स है एंड स्टेप्स एंड प्रोसेस जो है बिल्कुल हर चीज में बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, एंड वी ऑल नो दैट, राइट? तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, इफ यू आर यू थिंक दैट यू नो आपकी नॉलेज जो है अपरंपार है, लाइक काफी अच्छी है, एंड यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन वेयर, एंड यू नो आपके जनरल नॉलेज, आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स सिंगापुर के बारे में बहुत आपको अच्छे से पता है, देन यस यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द लायन सिटी चैलेंज। LION, that's what you have to write and send it to us at 9158963. भाई दो सवाल वहां से फर्स्ट फेज में आपको पूछे जाएंगे, आपने उसको जवाब दिया तो फिर उसके बाद जो है अगले कदम पे यानी कि राउंड टू पे आप क्वालिफाई होकर जाएंगे। वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पे बिल्कुल आपको टीम एक ईमेल भेजेगी, ईमेल में आपको सारा कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा कि क्या क्या कुछ नहीं होने वाला है। एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया जाएगा विच यू हैव टू फिल बिकॉज जो लायन सिटी चैलेंज है उसमें काफी सारी खास खास पॉइंट्स, जैसे यू नो आप अपने यू नो एक फ्रेंड का जो है मेंशन कर सकते हो जिनकी हेल्प आप इन लेटर इन द स्टेज व्हेन यू आर एक्चुअली प्लेइंग द गेम यू कैन टेक दैट एंड आल्सो अ लिटिल बिट अबाउट यू एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। सो वेल ये सारी चीजें होंगी तो जैसे जैसे होती जाएंगी आते जाएंगे आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे एंड देन यू विल बी अंडर द स्पॉटलाइट विद लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल एंड देन यू विल प्ले द लायन सिटी चैलेंज वंस यू विन दैट जस्ट इन केस। Okay, you will have so many mockers, let me tell you. Okay, every stage will give you a mocker to win something or the other. Ab isse zyada to main kya hi batau, pet mein pach nahi raha hai, lekin you have to. Ab udhar tak pahunchna hai to yes, you will have to just text us LION line at 9158963. Voila, gaane ka naam, voila, voila, on Radio Musty 24/7 live.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
3: हाँ जी जी।
2: आधा kg मसूर दाल।
3: जी जी।
2: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
3: जी जी।
2: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
2: क्या जी?
3: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
2: वाजी, क्या बाजी?
3: Order today from जीजी मार्ट, your personal grocer.
4: बाजू
5: ट्रैफिक अपडेट।
2: 6:00 हो चुके हैं 28 मिनट और इस वक्त ट्रैफिक अपडेट कुछ ऐसा कहता है दोस्तों कि व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स टुवर्स आफ्टर बोना विस्ता। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन PIE टुवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं टुवर्स एट टेम्पनिस एवेन्यू 5 एंट्रेंस और मिलेगा हेवी ट्रैफिक इस वक्त इन CTE टनल टुवर्ड्स AYE एट हैवलॉक रोड एग्जिट। ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज नीरज श्रीधर कविता सेठ साथ ही मैं वही कह रहे हैं जो मेरा दिल आपसे कहना चाहता है कि भाई तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। Cocktail के soundtrack से yes let's go.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ. यहाँ पर बिल्कुल बनी हुई है. एक सवाल पूछूं, मिडवीक ब्लूज चल रहा है बाय द वे भाई, बहुत ही रैंडम सवाल है, बट फॉर ऑल द बॉलीवुड बफ्स आउट देयर, ओके टेल मी इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस एंड गिव मी द आंसर 9158963 पर. ठीक है, हम ऑफकोर्स जीजी मार्ट तो आप सुन ही रहे होंगे. हमने ये भी आपको बताया था जीजी मार्ट का एक हैम्पर भी जो है वो आज आप जीत सकते हो. तो देखते हैं कि ज्ञान कितना सॉलिड है आपका. आपको मूवी तो याद ही होगी. देखो मैं ना वेंसडे को ऑलरेडी 90s वाले मोड पे चली जाती हूँ. अंदाज अपना अपना, ठीक है. अमर प्रेम, अमर प्रेम. याद है. सो नाउ देयर इज दिस ब्यूटीफुल यू नो कनेक्शन एंड केमिस्ट्री बिटवीन अमर एंड अमर के पिताजी, है ना, कि पिताजी आप पुरुषिनी महापुरुष. याद आया, देवेन वर्मा जी ने जो है किरदार निभाया हुआ है उसमें. इस मूवी अंदाज अपना अपना में, ठीक है, अमर के पिताजी यानी कि देवेन वर्मा जी के जो है किरदार का नाम क्या था? What was his name? बताओ. हाँ, अमर और आमिर खान और सलमान और प्रेम, ये तो सभी को पता है. ये बताओ, है ना, 9158963 पर, कि अमर यानी कि आमिर खान के कैरेक्टर के जो पिताजी बने हुए थे हमारे देवेन वर्मा जी, उनका नाम क्या था इन द मूवी अंदाज अपना अपना. सो व्हाइल यू थिंक अबाउट इट, थिंक ऑल्सो थिंक अबाउट यू माइट स्टैंड अ चांस टू विन दिस ब्यूटिफुल हैम्पर, जिसमें आपके वो जो जामुन ट्राइंगल्स एंड गुलकंद एंड ये जो नट्स है कृषि वल के, कितना बातें कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर आजकल कि इतना ये बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स है, ऐसा है, इट्स सो डिफरेंट, एक बार ट्राई करके देखो. ये तो मतलब मौका तो बहुत ही अमेजिंग है. नहीं बताओ. हाँ बाकी वो जो कर रहे हो ना ये जो साइड में, हाँ टैप, हाँ कर लो बताओ 9158963 पर, कर रहे हैं हम इंतजार, है ना. गुड इवनिंग.

0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
3: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
4: This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
5: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
6: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Musti 24/7. Aao, mood change kare.
3: Pata hai Arijit Singh ko legend bolte hain, it's for a reason, okay? It's bhai hai and banda solid hai. ये तो है, आपको मन ही पड़ेगा, कोई भी गाना गवा लो उस बंदे से। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ यहाँ पर, और चल रहा है ऑफ कोर्स मिडवीक ब्लूज। व्हाई एम आई सडनली टॉकिंग अबाउट अरिजीत सिंह ओवर हियर, बिकॉज नॉट ओनली जो म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके साथ पहले काम कर चुके हैं, बट द लेटेस्ट वंस ऑल्सो। नाउ वी ऑल नो दैट धुरंधर एंड द धुरंधर का म्यूजिक एल्बम हैज डन फैंटास्टिकली वेल, राइट? चाहे वो फर्स्ट वाला एल्बम हो या फिर दूसरा वाला एल्बम हो, एंड टिल डेट उसके कितने सारे गाने टॉप 20 के चार्ट्स में अभी भी अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं। हमारा बस चलता तो हम सारे 20 के 20 जो है उसमें सारे ही होते, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ऐसा लगता कि कैसेट का ए साइड बी साइड प्ले हो रहा है, एंड एक टाइम पर ऐसा था भी, यू नो, ऐसी फील आ भी रही थी। बट वेल, उसी में जहां पर एक तरफ बहुत ही तड़कते भड़कते गाने हैं, देयर इज अ सेट शाश्वत सचदेवा, हू इज द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर बोथ दीज मूवीज। He has also done justice to the slow numbers of both the movies, right? Isi ka ek bahut hi khoobsurat sa slow number hai, phir se. And we all know, right? We have heard this song. I'm not going to play that because achanak se na bahut hi zyada main senti ho jati hu wo gana sun kar, aur abhi ye hai Wednesday evening hai to senti nahi karna hai. But then coming back song and शाश्वत सचदेवा जो है वो यही कह रहे थे that अरिजीत सिंह जो है जब ये गाना गा रहे थे फिर से नैना, when he was singing that song, he got very very emotional, right? When you feel music from the bottom of your heart, it reaches to the other person as well, उतनी ही passion और उतनी ही शिद्दत के साथ। तो जब अरिजीत सिंह ने वो लाइनें गाई तो वो सीधा हमारे दिल को भी हिट हुई, राइट? एंड वी फेल्ट व्हाट ही वांटेड टू से, एंड स्पेशली इन द मूवी, इफ यू नो एंड इफ यू हैव सीन इट, जिस मोमेंट पे वो पीछे एज अ बैकग्राउंड स्कोर अरिजीत सिंह की आवाज होती है, सामने स्क्रीन पे रणवीर सिंह होते हैं, एंड यू नो वो गेट खुल रहा होता है, वहां पे उनकी माँ दिख रही होती है, ऊपर उनकी छत में बहन दिख रही होती है, इतना, I'm still getting goosebumps while talking and describing the scene to you. So I'm sure that Arijit Singh got emotional while recording it, and he also told Shashwat Sachdeva for this song that he will carry this song with him forever. And also Shashwat said that, you know, I have to give this credit to Arijit and his emotional surrender to the song for making it feel truly special and divine at the same time, dude. अलग ही बिकॉज ही थॉट दैट नॉट मच इज हैपनिंग, आई थिंक दैट्स व्हाई ही सेड दैट मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू स्टॉप एंड ओनली फोकस ऑन माई सेल्फ रादर देन एनीथिंग एल्स। हर किसी का वो पॉइंट आता है, हर किसी का। बट वेल, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इमोशनल, जैसे ही इमोशनल होंगे हम कुछ तड़कता भड़कता ही प्ले करेंगे। कमिंग अप नेक्स्ट इज अ नाइस सॉन्ग, यू विल एंजॉय इट ऑन रेडियो 24/7 लाइव। गुड इवनिंग।

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज
1: ओ भाई रायता रायता खेल रहे थे ये लोग, अभी भी खेल ही रहे हैं. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ मिडवीक ब्लूज आप सुन रहे हो यहाँ पर. और 7 बजे के उस पार भी हम पहुंच गए हैं बातें करते करते. ये जो रणवीर सिंह है हमारे और ये जो फिल्म बॉडीज है हमारी बॉडी टू बॉडी, सारी बॉडीज एक तरफ और हमारा जो है रणवीर सिंह एक तरफ. देखो क्विक रिकैप, डॉन 3 रणवीर सिंह का एग्जिट, उसके बाद रूमर्स की मांडवली हो गई है, बट उसके बाद अचानक से फॉइस बोल के हमारा जो फिल्म बॉडी है वो बीच में आते हैं, कितने नहीं सीना जोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम एग्जिट मारे थे और कितना लॉस हुआ है ना उनको, तो फिर गलत बात है ना, तो अब तुमको जो है पूरे पैसे देने पड़ेंगे और ये सारी चीजें. फिर अगेन मांडवली का र्यूमर, फिर ऐसा पता चला कि नहीं माने हैं, फिर ये पता चला कि रणवीर सिंह ने जो है इस बॉडी के ऊपर जो है केस कर दिया कि हम भी तुमको कोर्ट में लेकर जाएंगे, कि हमने तो जो जितना कहा था तुम सुन नहीं रहे हो, मैं तो कह ही रहा हूं कि ऐसा है वैसा है, ये सारी बात हुई. देयर वाज देन अनदर फिल्म बॉडी इन द होल कॉन्वर्सेशन एंड दैट फिल्म बॉडी सेड नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे. उस फिल्म बॉडी की जो है पूनम ढिल्लो है शायद वन ऑफ द हेड्स, रणवीर सिंह के पिताजी ने उनको थैंक यू भी बोल दिया था कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, आपने हमारा साथ दिया, हमें बहुत अच्छा लगा. अब वॉइस वापस आ गई है इन द होल सिनेरियो, ठीक है. अब वो क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेड व्हाट्सएप के कॉन्वर्सेशन है हमारे पास एंड होटल बुकिंग के अरेंजमेंट्स हैं कनेक्टेड टू द फिल्म्स प्री प्रोडक्शन एंड कास्टिंग का कोऑर्डिनेशन. सो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड बाय द वे कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं आर बीइंग साइटेड एज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर द लिजिट नॉन कोऑपरेशन इशूज विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये जो पूरी की पूरी चीज है कि ये हमने तो कहा ही था कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं, द प्रोडक्शन रिलेटेड ट्रैवल है एंड स्टे की बुकिंग्स हैं, दे पॉइंट टुवर्ड्स द प्रायर डिस्कशंस एंड द प्लानिंग व्हिच लेटर बिकेम अ पार्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट एज वेल. वो ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्री के कई सारे फिगर्स जो है अराउंड अ हाई वैल्यू डील स्ट्रक्चर, दे हैव एडेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉल आउट, ऑल्दो नो पार्टी हैज ऑफिशियली कन्फर्म्ड कि इसके एग्जैक्ट मॉनिटरी डिटेल्स क्या है. नाउ द इशू हैज बिकम part of a larger non-cooperation discussion raised by FWISE, जो कि इन्होंने भाई डिसाइड कर लो करना क्या है. मैं तो ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले तो क्लैरिटी नहीं है. पहले उन्होंने कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, पहले कहा बैन है, फिर कहते नहीं नहीं बैन तो नहीं, हमने कहा हम कोऑपरेट नहीं करेंगे. फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अनाउंस किया कि नहीं नहीं अब सब कुछ ठीक है, अब ठीक है, कुछ नहीं होगा. वॉट सोच लो, डिसाइड कर लो, फिर आगे बढ़ो. हाउ अबाउट दैट? नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. गुड इवनिंग.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!
6: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
7: भाई कोई तो माले अल्लम सुनमा में एंट्री मार रहा है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर चल रहा है ऑफ कोर्स मिड वीक ब्लूज. 7:17 किसने सोचा था, बट देन ऑफ कोर्स ही हैज टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसा मैं मानती हूँ भाई. एंड यू विल नॉट बिलीव द नेम आई एम गोइंग टू टेक राइट नाउ. करण द जौहर, यस, के जो की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ. यस, ही हैज एंड ही इज अबाउट टू एंटर मलयालम सिनेमा विद ओनिया द एज ऑफ इल्यूजन. धर्मा प्रोडक्शंस जो है वो मलयालम सिनेमा में अपना डेब्यू करने वाले हैं इस मूवी के साथ. एंड इट्स स्टारिंग पृथ्वीराज सुकुमारन एंड मंजू वारियर. इट इज बीइंग डायरेक्टेड बाय राहुल सदासिवन. एंड ये जो फिल्म है, इट मार्क्स अ न्यू चैप्टर धर्मा प्रोडक्शन हाउस के लिए. एंड ऑल्सो इट प्रोमिसेज इट्स काइंड ऑफ फोकलोर इंस्पायर्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो कि लोगों को मिलेगा. नॉट बैड, नॉट बैड भाई. I to want to write a personal kind of a chitthi to Karan Johar that give me one ek bar wo jo ekdam 90 style writing karke ek bar ek aisi movie wapas se bana do yaar, maza hi aa jaye. Matlab wo jo jitters aur feels aur butterflies tumne humko us time pe diya hua tha na, ek bar wapas se mil jaye na, तो कैसा एकदम अलग ही फील होता है. इनफैक्ट आज की जनरेशन को भी, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस मे बी फीलिंग दैट हाउ डू यू फील बटरफ्लाइज एनी मोर, मे बी दे विल ऑल्सो एंजॉय इट. नहीं, कभी कभी एकदम ऐसे सॉलिड सी क्रेविंग होती है. डोंट वी गो बैक टू ऑल करण जौहर की चीजी मूवीज. कितना भी उसमें हम लोग बोल दें कि नहीं ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, राहुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट हेलो सॉरी, हमारा तो प्यार का पार्ट राहुल ने ही हमको सिखाया है. सो बस ठीक है, गुड ऑन हिम एंड ऑल द बेस्ट टू धर्मा प्रोडक्शंस इन दिस न्यू वेंचर एज वेल. वेल आई डो ऑलवेज से कि मैं तो आई स्टार्ट थिंकिंग 90s के रास्तों पर जो है ऑलरेडी, बट ठीक है, कल बात करेंगे तसल्ली से 90s के बारे में. फिलहाल के लिए आज के गाने और आज की बात ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस
3: का अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
4: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
5: टाइम टू रेज द बार।
6: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
4: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
7: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
8: हाँ जी जी,
7: 1/2 kg मसूर दाल,
8: जी जी,
7: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
8: जी जी।
7: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
8: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
7: क्या जी?
8: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
7: वाह जी क्या बात जी।
8: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज़ ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.

Tum ta, tum ta, tum ta, tum ta.

गद्दारी की बू आ रही है मुझे मिस इतवारों से। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अल्ट्रा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज। कह रही है मुझसे यहाँ पर कि वो दो दो आई थिंक बैक टू बैक हफ्ते हुए थे जो मस्ती टॉप 20 पे जो है शाम को मैंने रेणुका को ज्वाइन किया था। कहते मैंने कहा है कि वापस से तुमको बुलाया, मैंने कहा वेरी गुड, बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। हाँ बट वेल एनीवेज फारा खान भी कुछ ऐसा ही कह रही है अक्षय कुमार को, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। सो शी गोज बैक टू दैट मूवी जो आज तक फारा खान जो है कहती है कि भाई इस मूवी ने तो मुझे कुछ मतलब ऑब्वियसली खर्चा बहुत ज्यादा हुआ बट देन इट डिड नॉट गिव मी एंड इट वाज अ वेरी वाला टाइप ऑफ मूवी। 30 मार खा की मैं बात कर रही हूँ, अक्षय कुमार एंड कैटरीना कैफ एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल वर देयर इन दिस मूवी। बट खास बात बैक टू बैक में कुछ ऐसा है कि बिहाइंड द सीन में ठीक है कहते कि हम लोग कहीं और शूट कर रहे थे विच वॉज नॉट मुंबई ओके एंड वहां पर हमारे अक्की जो है अक्षय कुमार वो रोज आते जाते थे एंड एज वी ऑल नो अक्षय कुमार ही इज लाइक वेरी पंक्चुअल एंड एवरीथिंग। कह रहा हूँ रोज वो 7:45 सुबह पहुंच जाता था लेकिन रात को चला जाता था वापस। लेकिन ये आना जाना कैसे होता था, टैक्सी से नहीं होता था क्योंकि जहां पे ये शूटिंग चल रही थी वो काफी दूर था जो है ना। तो कह रही वो हेलीकॉप्टर यूज करके रोज शूटिंग पे, भाई वो रोज हेलीकॉप्टर से आना जाना कर रहा है। वो कहते हैं कि पैसा तो हमारा गया है, रॉनी श्रू वाले से पूछो कि कितना कितना ज्यादा जो है हमारा खर्चा गया और मूवी ने कुछ किया अभी नहीं। तो अक्षय कुमार वहीं पे बैठे हुए थे, कहते मैंने क्या खर्चा, मैंने क्या खर्चा, कहते नहीं नहीं बट एक बात तो कहनी पड़ेगी, चाहे वो हेलीकॉप्टर से ही क्यों ना आता हो लेकिन वो सुबह बिल्कुल बिफोर टाइम जरूर आ जाता था। मतलब कभी कभी होता है ना कि यू हैव टू जस्ट चूज कि मतलब किस चीज के साथ आप डील कर ही सकते हो एंड एक ही इंडस्ट्री में रहना है तो आप किसी को इस तरह से नाराज करके भी नहीं बैठ सकते। बड़ा प्रॉब्लम है जी, बड़ा प्रॉब्लम है बट ऐसा ही चलता है, क्या करें दोस्त। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल बढ़ते हैं आगे और ऑफकोर्स आई विल बी राइट बैक इन जस्ट अ वाइल।

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: हाँ जी, बस अब ये गड्डी जो है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पे लगाते हैं, थोड़ी देर का ब्रेक है क्योंकि रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मिडवीक ब्लूज यानी वेंसडे ऑलमोस्ट ओवर. यस, दैट एक्साइटमेंट इज डेफिनेटली देयर. सो ये तो हो गया वेंसडे वाला जो हमारा कार्यक्रम वो, बट कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले ले मजा. लिरिक्स बुलवा लो मुझसे किसी भी गाने के, बट देन एनीवेज कल होगा 90s वाला नशा, है ना, मस्ती 90s मिक्स टेप लेकर, क्योंकि कल है थर्सडे तो मैं हाजिर हो जाऊंगी ऑन टाइम डॉट 11 बजे. एंड उसके पहले जो है सुबह हमारी पुरवा आ जाएगी, उसके बाद फिर शाम को हमारी मुग्धा आ जाएगी. मतलब ऐशी ऐश है आपकी, तो जब ट्यून इन करो तभी मजे, तभी मस्ती, तभी म्यूजिक, तभी मैजिक. वाह, चलिए इसी बात पे, यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड. आई होप यू हैड अ गुड टाइम बिकॉज आई डेफिनेटली डिड. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा कैरी है. बाय बाय स्वीट ड्रीम्स, अभी भी सोना, बट यस, डू नॉट फॉरगेट टू स्पेंड सम रियली क्वालिटी टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसके साथ भी हो. बाय.

0: हम आ गए
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार। लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: तेरी यादों का कारवा लगातार चल रहा है, तेरे बाद अब ये मेरा हम सफर बन रहा है। वहाँ यादों का कारवा रुकता नहीं कभी, यहाँ सिलसिला हिचकियों का थमता नहीं कभी। दूर होकर भी वो कैसे इतना प्यार कर रहा है, लगता है आज भी वो मेरा इंतजार कर रहा है। और मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। नहीं, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं तो हूँ समर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ यादों का कारवां। कैसे हैं सिंगापुर? हमारा नमस्कार नहीं कबूल करेंगे? तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या है आप सबका हाल? 2009 और 2010 में आई बॉलीवुड फिल्मों की बेहतरीन यादें और उनके गाने लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। वो तराने जो आपके दिलो जहन में छाए हुए हैं, आज आपके लबों पर नहीं आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं, नाम समर वैसे अच्छा है, पर आप मुझे सैम, सैमी कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म जिसका जिक्र किए बगैर 2009 की बात करना बेमानी होगा। ये वो फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, ऐसा धमाल कि कमाई के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। अब सोचिए, कमाई जब इतनी जबरदस्त रही तो फिल्म लोगों को कितनी पसंद आई होगी। आपने गेस कर ली? नहीं, कमाल करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 3 बेवकूफों की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 इडियट्स की। कमाल की फिल्म चेतन भगत की मशहूर इंग्लिश नॉवल 5.1 पर बेस्ड ये फिल्म हर मायने में बेहतरीन है। वाकई में बेहतरीन पटकथा, बेहतरीन कॉमेडी, बेहतरीन ड्रामा, बेहतरीन अदाकारी, बेहतरीन म्यूजिक और कुल मिलाकर सब कुछ बेहतरीन। विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। मैं मिडास टच बोलता हूं उनको, वो जिस फिल्म को छू लेते हैं वो सोना बन जाती है। और ये फिल्म सिंगापुर इसीलिए सुपर डुपर हिट होते हुए भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली फिल्म बनी थी। जी हाँ, इससे पहले जो फिल्में थी वो बमुश्किल 100 करोड़ का आंकड़ा छुपाती थी। 3 इडियट्स ने कमाल करके दिखाया और सिर्फ 200 करोड़ ने 400-500 करोड़ रुपए कमाए इस फिल्म में। 3 इडियट्स में 3 बेवकूफ दोस्तों की तिगड़ी का किरदार निभाया था आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी ने। पता नहीं वो इडियट थे या हम इडियट हैं जो उन्हें इडियट कहने। वैसे मैं आपको बताऊं ये इडियट क्यों थे इस फिल्म में? बिकॉज दे वर द 3 इंटेलिजेंट डॉक्टर इन ऑपरेशन थिएटर। फिल्म के पहले आपका क्लाइमेक्स याद है आपको? ये इंजीनियर्स डॉक्टर बन जाते हैं। बहरहाल फिल्म बहुत ही कमाल की थी और इसमें 3 इडियट्स का किरदार निभाया था आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी ने। और इन 3 लीड कैरेक्टर्स को लेकर बनाई गई इस फिल्म में करीना कपूर, बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने अपनी मंजी हुई एक्टिंग का तड़का नहीं लगाया होता ना तो शायद इस फिल्म में कुछ मिसिंग रह जाता। बहरहाल गानों की बात करें तो इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और गाने लिखे थे वेरी टैलेंटेड लिरिसिस्ट एंड नेशनल अवार्ड विनर स्वानंद किरकिरे ने। और इन लफ्जों को संगीत में पिरोया है म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा ने। गाने सभी एक से बढ़कर एक हैं। मुश्किल तो ये है कि मैं कौन से गाने आपको सुनाऊं। तो कंप्यूटर जी की हेल्प लेकर इस शो को शुरू करते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई, आप मेरे साथ ही रहेगा सिंगापुर। अभी तो बहुत सी फिल्मों का जिक्र होगा जो 2009 और 2010 में रिलीज हुई थी और इनसे जुड़ी तो आपकी बहुत सारी यादें हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड।

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

वेलकम बैक सिंगापुर, मैं हूं समर, रेडियो में 24/7 लाइव पर यादों का कारवां, जो आज 2009-2010 की फिल्मों के एक बेहतरीन सफर पर आपको ले चलेगा। तो आज जिस फिल्म का अब मैं जिक्र कर रहा हूं वो है पा। 2009 में आई थी ये फिल्म पा। ये फिल्म थ्री इडियट्स की तरह से बहुत ज्यादा नहीं चली, बहुत ज्यादा कमाई नहीं की इसने, लेकिन इस फिल्म की सोच, इसकी कॉन्सेप्ट, अदाकारी और कुछ लीक से हटकर करने की कवायद ने दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली। पा उन्हीं फिल्मों में से एक थी। जी हाँ, बॉलीवुड्स लिविंग लेजेंड बिग बी अमिताभ बच्चन के करियर का सबसे चैलेंजिंग किरदार अगर देखा गया तो वो इसी फिल्म में था। बच्चन साहब ने प्रोजेरिया जैसी बीमारी वाले बच्चे का किरदार इस फिल्म में निभाया था। ओरो नाम का एक किरदार था। और क्या कमाल की एक्टिंग की है बच्चन साहब ने, वाकई मतलब इतनी कमाल की कि यकीन ही नहीं होता कि कोई बुलंदी पर पहुंचा एक्टर एक बच्चे का किरदार निभा सकता है और इतनी खूबसूरती से निभा सकता है, और वो भी ऐसा बच्चा जो उम्र में भले ही 12 साल का हो, और उससे भी बड़ी बात अपने रियल लाइफ बेटे का बेटा बनकर। वास्तव में कमाल के अमिताभ बच्चन, तभी तो वो लेजेंड है, लिविंग लेजेंड। तो आइए उन्हें करते हैं सैल्यूट और कहानी को बढ़ाते हैं आगे। उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह इसीलिए कहते हैं, न जाने कितने ही नामों की पहचान मिली उन्हें। खैर, इस फिल्म में उनकी मां बनी एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ की केमिस्ट्री भी दर्शकों के दिलों को छू गई। वेल, कॉमेडी और ड्रामा से भरी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आर बालकृष्णन ने, जिन्हें सभी प्यार से आर बालकी के नाम से पहचानते हैं, जबकि फिल्म को प्रोड्यूस किया था खुद बच्चन साहब ने, उनके बेटे अभिषेक बच्चन और सुनील मनचंदा ने। फिल्म साल 2009 के आखिर यानी कि दिसंबर में रिलीज हुई थी और ढेर सारे अवार्ड्स अपने नाम कर गई थी। जहां तक बात गानों की है तो फिल्म में 8 गाने दिए गए हैं, जिनमें से एक गाना मेरे पाँव में तो बिग बी की ही आवाज है। सभी गानों को सुरों से सजाया है वेटरन कंपोजर इलैया राजा ने। तो कौन सा सुनाएंगे कंप्यूटर जी? कंप्यूटर जी पर छोड़ देते हैं पा के ये गाने सिर्फ आपके लिए रेडियो मिस्ट्री 24/7 लाइव पर। उसके बाद मैं लौटूंगा तो एक और बेहतरीन फिल्म का जिक्र करूंगा जो इसी साल यानी 2009 में आई थी। स्टे कनेक्टेड।

वेलकम बैक सिंगापुर। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां मेरे यानी समर के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में साल 2009 और 2010 की फिल्म्स की, उनके बेहतरीन गानों की। तो दोस्तों, साल 2009 में कई फिल्में आई थी जो थोड़ा बहुत लीक से कुछ हटकर कही जा सकती हैं, और ऐसी फिल्मों में एक थी CC2C। जी हाँ, CC2C, अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण की फिल्म चांदनी चौक टू चाइना। इस फिल्म की कई रोचक बातें थी। दरअसल इस एक्शन प्लस कॉमेडी फिल्म को बनाने में अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ था। लागत आई थी 800 मिलियन रुपीस की और कमाई हुई सिर्फ और सिर्फ 554 करोड़ रुपए की, यानी कि आधे से थोड़ी सी ज्यादा। ऐसा नहीं कि फिल्म बेकार थी, लेकिन कहते ना, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। जी हाँ, पब्लिक ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं तो फिल्म पिट गई। लेकिन हाँ, इसके गानों को बहुत पसंद किया गया, और वैसे गाने ना पसंद करने का तो सवाल ही नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। इस फिल्म में जो गाने हैं उन्हें म्यूजिक से सजाया संवारा है शंकर एहसान लॉय ने, कैलाश खेर, बप्पी लहरी और बोमिया की एक्सपर्ट टीम ने। एक गाना एक्चुअली बप्पीदा ने गाया भी, और वो गाना म्यूजिक भी बप्पीदा ने दिया उस गाने का। कमाल के गाने सभी के सभी। कुल 8 गानों में से 2 गाने तो रीमिक्स हैं, बाकी जो टाइटल ट्रैक है चांदनी चौक टू चाइना, इसके अलावा तेरे नैना, चकलैंड दे और सिद्धू, ये 3 गाने जबरदस्त हिट हुए, लोगों ने काफी पसंद भी किया इन्हें। वैसे जिन लोकेशंस पर और जिस तरह से गाने फिल्माए गए ना, उसने वाकई इसमें 4 चांद लगाने का काम किया। और एक बात और जो मैं आपको बताने वाला था, और वो ये कि इस फिल्म का नाम पहले ये नहीं रहने वाला था चांदनी चौक टू चाइना। पहले डिसाइड किया गया था कि इसका नाम होगा मेरा नाम चिन चिन चू या फिर मेड इन चाइना, लेकिन आखिर में ये नाम फाइनल हुआ। तो चलिए, क्यों ना सुन लिया जाए इस फिल्म का कोई बेहतरीन गाना। तो सुन लीजिए, सुनकर लौट कर जरूर आएगा, इंतजार रहेगा आपका। अपनी यादें भी हमसे यूं शेयर करते रहिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। स्टे कनेक्टेड।

0: यो निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, परांठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6। तुहाडे सामने लैके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपया इनाम। सुनो, गौर नाल सुनना।
1: किथे चली है गोपी दा फूल बन के, कुड़िए बदामी और बांध करो है।
0: पॉप तेरा पॉप चलाऊ कंजरा।

0: Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you, too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: एक बार फिर आप सभी मेहरबान कदरदान का स्वागत है साहिबान। यादों का कारवा है शो का नाम। मैं हूं सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपका दोस्त एंड होस्ट समर। और मैं आपको आज लिए चला हूं 2009-2010 के बेहतरीन फिल्मों के दौर में। बहरहाल दोस्तों, ये बताइए कि क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, और वो भी पुरानी दिल्ली। और दिल्ली विल्ली जाना हुआ होगा तो उम्मीद करते हैं कि आप चांदनी चौक भी जरूर गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक की बातें क्यों कर रहा हूँ, अभी तो चांदनी चौक टू चाइना की बात की है। दरअसल दोस्तों, मैं जिस फिल्म की बात करने जा रहा हूँ और जिसके गानों का जिक्र करने वाला हूँ, वो इन्हीं के इर्द गिर्द की बसावट है और वहीं के माहौल पर बनाई गई है। याद आया आपको? जी, बात हो रही है दिल्ली 6 की। जैसा नाम वैसी फिल्म। मेरा मतलब ये फिल्म भी कुछ हटकर रही। वैसे दिल्ली 6 का नाम सुनते ही हम सभी के जहन में दो गाने तो जरूर सामने आ जाते हैं, जिसमें अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर की दिल्ली वाली केमिस्ट्री को खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है। याद आया वो गाना? एक तो वही ससुराल गेंदा फूल और मसकली, आई लाइक इट, आई रियली लव इट। वास्तव में कमाल का कॉम्पोजिशन है इन गानों का। और हाँ, म्यूजिक पता है किसने दिया है? जी, म्यूजिक दिया है लिविंग लेजेंड A.R. रहमान साहब ने। कमाल के लिरिक्स प्रसून जोशी के, और इन लिरिक्स को म्यूजिक में ऐसा पिरोया रहमान साहब ने कि हर किसी को ये भा गया। मसकली को मोहित चौहान की आवाज मिली, रहना तू गाना खुद रहमान साहब ने गाया और कमाल गाया। कुल 10 गानों में से एक गाना है नूर, जो रिसाइटल है, जिसे गाया है नन अदर देन बॉलीवुड्स बिग बी। और इस फिल्म की बेहद उम्दा कवाली, मौला मौला मौला मेरे मौला, आई लाइक इट, बहुत ही कमाल की है वो, रूहानी। एक और बात इस फिल्म से जुड़ी मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये कि फिल्म के गानों को एक टीवी रियलिटी शो के मंच पर रिलीज किया गया था, और जो फिल्म का साउंड ट्रैक था उसे हर क्रिटिक से दाद मिली थी। वेल, अब इतनी सारी बातें हो गई तो गाना सुन लेते हैं पहले, उसके बाद इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। अब 2010 में ले चलेंगे हम आपको, जब लौटेंगे तो 2010 की फिल्मों का जिक्र करेंगे। स्टे कनेक्टेड।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिंगापुर शो चल रहा है, यादों का कारवां, और मैं हूं समर आपके साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। और आज हम आपको लिए चले हैं बॉलीवुड की सदाबहार फिल्मों के 2009-2010 में रिलीज हुई फिल्मों के बेहतरीन सफर पर। जी हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि मजा आना शुरू हो गया होगा आपको। और वैसे भी 2009 और 2010 में रिलीज हुई फिल्मों के गाने भी तो ऐसे ही हैं कि जबान पर जब भी चढ़ जाते हैं तो उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। मैंने आपको दिल्ली 6 की गाने सुनाए, तो भाई सिर्फ दिल्ली की बात ही क्यों ना हो। उससे पहले मैंने चांदनी चौक टू चाइना का जिक्र किया, मतलब दिल्ली का जिक्र बहुत हो गया भाई। मुंबई वाले नाराज हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं क्या? क्यों मैडम? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। तो जी, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। अगली फिल्म जो मैं लाया हूँ ना, आपको ध्यान में रखकर ही लाया हूँ, यानी मुंबई वालों का ध्यान रखकर लाया हूँ। दरअसल अब जिस फिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, वो है मुंबई बेस्ड फिल्म। बात कर रहा हूँ 2010 में रिलीज हुई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की। फिल्म को शुरुआती रिस्पॉन्स कमाल का मिला, पर जो दो तीन गाने थे उन्होंने धमाल मचा दिया। मेरा मतलब है कि फिल्म से ज्यादा प्यार उसके गानों को मिला। अजय देवगन, कंगना, इमरान हाशमी, प्राची देसाई, रणदीप हुड्डा और गौहर खान ने 70s-80s के थीम वाले किरदारों को कमाल का निभाया। रिस्पॉन्स बहुत ही कमाल का रहा, इसलिए आगे चलकर इसका सीक्वल भी बनाया गया। बहरहाल, ये जो पहली वाली फिल्म है, ये बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी है और इसमें कुल 14 गाने, और इन सभी के सभी 14 गानों का म्यूजिक दिया है बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने, जबकि इन गानों के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल, नीलेश मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य ने। वैसे दो गाने तो जबरदस्त हिट हुए, एक तो पीलू ओए होए जिसे गाया है टैलेंटेड सिंगर मोहित चौहान ने, तो वहीं दूसरा गाना रहा तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, जिसे आवाज देकर चार चांद लगाए राहत फतेह अली खान साहब ने। फिल्म के गाने बहुत ही कमाल के, तो एक काम करते हैं, बैक टू बैक दो गाने सुन लेते हैं इस फिल्म से। सिंगापुर क्या कहते हैं आप? मूड बन जाएगा। आप भी यूं ही अपनी यादें हमसे ताजा करते रहिए। इन फिल्मों से जुड़ी हुई कोई बातें, कोई यादें अगर हैं आपकी तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बस लौट कर आता हूँ, आपका भी जिक्र करेंगे। फेसबुक पेज है हमारा, वहां आइएगा। स्टे कनेक्टेड

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक सिंगापुर। आज समर लेकर आया है एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें है 2009 और 2010 में खिले फूल। मेरा मतलब है आज आप सुन रहे हैं दो सालों में रिलीज हुई फिल्मों के बेहतरीन गाने। जी हाँ, कह सकते हैं कि गानों को रिकॉल किया जा रहा है यहाँ पर। बहरहाल अब बात करते हैं चुलबुल पांडे की, जो रज्जो का दीवाना हो चला है, उसे दिल दे बैठा है। तो वहीं छेदी सिंह चुलबुल की जान का प्यासा बना हुआ है, और मक्खी चुलबुल का सौतेला भाई, उसका क्या। आप सोच रहे होंगे यार क्या हो गया समर, लेकिन कुछ तो जरूर होंगे जो समझ गए होंगे। जी समर का इशारा है, हाँ जनाब समर का इशारा है 2010 में रिलीज हुई सुपर डुपर हिट फिल्म दबंग की ओर। जी हाँ, वही दबंग जिसे लोगों ने इतना पसंद किया कि चुलबुल पांडे का किरदार निभाने वाले सलमान खान को दबंग खान का ही नाम दे डाला। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं। वैसे सिंगापुर जितनी धांसू ये फिल्म है, इसके एक्शन सीक्वेंस भी उतने ही कमाल के हैं, और इसके गाने धांसू हैं। और ध्यान है वो गाना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये तो जब भी कहीं पर बजने लगता है मजाल है जो पांव थिरकने से रुक जाए। गाना सुनते ही बॉडी खुद ब खुद धड़कने करने लग जाती है। मेरा मतलब है कि गाना वाकई कमाल का डांसिंग नंबर है, इस बात से तो आप सभी इत्तेफाक रखते होंगे। सही गाना, और वैसे सिर्फ एक यही गाना नहीं है फिल्म का टाइटल ट्रैक हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, इसके अलावा तेरे मस्त मस्त दो नैन, सभी गाने जबरदस्त हिट हुए। फैज अनवर, ललित पंडित और जलीस शेरवानी ने इनके खूबसूरत गानों के लिरिक्स लिखे, जिन्हें उसी खूबसूरत अंदाज से सजाया है वन द बेस्ट म्यूजिक ड्यू साजिद वाजिद ने। बस आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में धमाल मचा दिया था। जरा गौर से सुनिएगा, दरअसल इस फिल्म को बनाने में खर्चा आया कुल 30 करोड़ रुपए, और कमाई पता कितनी हुई, गैस कीजिए एक अंदाजा तो लगाइए। नहीं, चलिए रहने दीजिए, भारी अमाउंट है, गैस करने में समय लग जाएगा। वेल, फिल्म ने कमाए 230 करोड़ रुपए, जो कि छप्पर फाड़ कर कमाई कही जा सकती है। खैर, अभी फिलहाल कमाई वमाई की बात को रखते हैं अलग, और अभी सुन लेते हैं फिल्म के ये गाने। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर मैं हूँ समर, आपके साथ, स्टे कनेक्टेड।

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

वेलकम बैक। समर एक बार फिर कर रहा है आपका स्वागत रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां और आज बात हो रही है बॉलीवुड के 2009 और 2010 में रिलीज हुई फिल्मों के जबरदस्त हिट सॉन्ग्स और उनके म्यूजिक की। तो भाई सिंगापुर साल 2010 में ऐसी कई फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अभी मैंने दबंग फिल्म का जिक्र किया था, उसका गाना भी आपको सुनाया। दबंग ने तो अपना कोटा पूरा कर लिया, मेरा मतलब जितना खर्चा वर्चा किया था उससे 7-8 गुना की कमाई कर ली। वाकई दबंग में कमाल धमाल मचा दिया था सलमान खान ने। पर हाँ, सल्लू मियां जितना नहीं लेकिन एक चॉकलेटी एक्टर भी अपने लुक्स, अपने अंदाज और अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत रहा था इन्हीं दिनों में, और वो हैं ऋषि कपूर और नीतू सिंह के सुपुत्र साहब रणबीर कपूर। उस टाइम पर रणबीर कपूर के सितारे भी बुलंदी पर थे और साल 2007 से फिल्म सांवरिया से शुरू हुआ उनका करियर ग्राफ कभी ऊपर तो कभी नीचे, किसी ऊंट की चाल की तरह से चल रहा था। सांवरिया के बाद बचनाया हसीनो, फिर वेकअप सिट, फिर अजब प्रेम की गजब कहानी और फिर रॉकेट सिंह। उतार चढ़ाव के इस दौर के बाद जब रणवीर 2010 में एंटर हुए तो उन्हें फिल्म मिली प्रकाश झा की राजनीति। अब ये फिल्म उनके चॉकलेटी और लवर बॉय के अंदाज से कुछ हटकर थी। यहाँ उन्हें समर प्रताप नाम के किरदार में अपने आप को ढालना था और समर का किरदार निभाना इतना आसान नहीं होता सिंगापुर, यू नो। ऐसा किरदार जो राजनीति में अपने पिता की मौत के बाद बिल्कुल नए बंदे की तरह हो। जी हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग जरूर था लेकिन रणबीर जैसे कलाकारों के लिए नामुमकिन शायद नहीं था। और जब फिल्म में अजय देवगन, नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी और अर्जुन रामपाल जैसे टॉप क्लास मेल एक्टर्स की फौज हो तो रणबीर को अपनी मौजूदगी दिखा पाना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि उस पर खरे भी उतर के सामने आए। क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। फिल्म में कुल 9 गाने हैं जिनका म्यूजिक प्रीतम, आदेश श्रीवास्तव और शांतनु मोइत्रा ने दिया है। वैसे 4 तो रीमिक्स गाने, लिरिक्स गुलजार साहब, इरशाद कामिल और समीर के साथ स्वानंद किरकिरे ने भी लिखे हैं। तो चलिए बातें बहुत हो गई, सुन लेते हैं राजनीति फिल्म का ये गाना जो मुझे बहुत पसंद है। इसका म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव ने दिया है। मेरा पिया मुझसे बोलत नहीं, आई रियली लव इट, बहुत कमाल है।

सिर्फ फिल्मों की यादों से रिलेटेड नहीं है, आपकी यादों से है भाई। आफ्टर ऑल ये शो सिर्फ आपके लिए है कि नहीं। तो चलिए अब अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं जो 2010 में रिलीज हुई थी। ये थी ऋषि कपूर द जूनियर की, अगेन मेरा मतलब रणबीर कपूर की ये फिल्म थी। राजनीति फिल्म में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी अंदाज से निभाया था। प्रकाश झा की राजनीति फिल्म के लिए अभी क्रिटिक्स रणबीर कपूर को बधाई दे ही रहे थे कि साल 2010 के जाते जाते रणबीर ने एक और कमाल की फिल्म देकर सभी के होश उड़ा दिए। यहाँ वो फिल्म थी अनजाना अनजानी। यहाँ रणबीर को साथ मिला गॉर्जियस एंड सुपर टैलेंटेड प्रियंका चोपड़ा का। वैसे ये कह सकते हैं कि अनजाना अनजानी यूथ ओरिएंटेड फिल्म थी जिसमें रणबीर प्रियंका के बीच की जबरदस्त लव केमिस्ट्री को दिखाया गया था। और तो और कमाल के लोकेशंस फिल्म की जान रही। अमेरिका में पिक्चराइज है फिल्म, काफी हद तक यूएसए में इसे शूट किया गया है। लोकेशंस लवली लवली हैं। वेल जहां तक म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात है तो इसकी भी जिम्मेदारी यूथ ओरिएंटेड गाने बनाने की एक्सपर्ट विशाल और शेखर के पास थी। और जैसा कि पता था विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक है तो कमाल का ही होगा। बस वो हुआ भी, लगभग सभी गानों को बहुत पसंद किया गया। इनमें से कई गाने तो आज भी डिस्कोथेक और पब्स में म्यूजिक लवर्स को थिरकाने का दम रखते हैं। तो फिलहाल तो मैं इस फिल्म से कौन सा गाना आपको सुनाऊं, एक तो टाइटल ट्रैक सुना देता हूं अनजाना अनजानी, और एक मुझे जो बहुत पसंद है नैना लगे बारिशा। क्या कहते हैं आप, अनजाना अनजानी बदल दूं? तो फिर कौन सा? तू ना जाने तेरे आसपास है खुदा। तो कंप्यूटर जी हेल्प करो प्लीज। कहीं जाएगा तो मिस कर जाएगा कि कौन सी थी वो फिल्म। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर जब मैं लौटूंगा तो एक और फिल्म का जिक्र करूंगा जिसने धमाल मचा दिया था 2010 में, एक बड़ा टैलेंटेड स्टार दिया था हमें। कौन सी फिल्म? कुछ लोग समझ गए, जो नहीं समझे उन्हें मैं बताऊंगा आके। स्टे कनेक्टेड।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Singapore, prepare for impact.
6: 3, 2, 1.
7: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

करवा, वेलकम बैक। अरे ये क्या करो यार, तुम तो खुद लाइव बैंड बन गए। नमस्कार और स्वागत नहीं करेंगे हमारा? देखिए, हम अपने बैंड के साथ लौट कर आए। नाम तो आप जानते ही हैं, समर है मेरा नाम। रेडियो 24/7 लाइव पर आपको एंटरटेन करना है मेरा काम। आज यादों का कारवां के जरिए हम 2009 की फिल्मों का जिक्र कर चुके, 2010 के साल में चल रहे हैं, और ये वो फिल्म है जिसका मैंने ट्रेलर आपको दिखा दिया है। नहीं समझे? मतलब जी बैंड बाजा बारात की बात कर रहा हूँ मैं। अब भाई रणबीर कपूर की मैंने बहुत बात कर ली, तो रणवीर सिंह की बात करना भी बहुत जरूरी हो गया कि नहीं हो गया? वैसे शुरू शुरू में मुझे रणवीर और रणबीर में कंफ्यूजन रहता था। आई थिंक मेरे जैसे कईयों को ये कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन वक्त बीता तो हम सभी इन्हें पहचाने लग गए। बात हो रही है फिल्म बैंड बाजा बारात की, और ये फिल्म रोमांटिक के साथ कॉमेडी का तड़का थी। रणवीर सिंह के साथ अनुष्का की जोड़ी शानदार लगी लोगों को, और क्रिटिक्स ने भी इसे खूब पसंद किया। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। वेडिंग प्लानर्स और उनके फील्ड के इर्द गिर्द इस फिल्म को ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला। फिल्म जितनी अच्छी थी उससे कहीं ज्यादा इसके गाने अच्छे थे, और इन दमदार गानों के पीछे रोल रहा म्यूजिक कंपोजर सलीम सुलेमान का। वैसे वो गाना ना एवं लुट गया, ये तो आज भी बजता हुआ सुनाई दे जाता है, और ऐसा लगता है तो हमारी बात कर रहे हैं। चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, कुछ जिंदगी ऐसी हो जाती कभी कभी। नहीं तो जी, मेरी गारंटी है कि आप भी इन गानों को सुनकर उठकर थिरकने लग जाएंगे। तो दो थिरकने वाले गाने बजा दें आपके लिए। वैसे इस फिल्म का वो गाना भी मुझे बहुत पसंद है, आधा है आधा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या करें क्या ना करें, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। बैंड बाजा बारात के साथ मैं यहाँ तैयार खड़ा हूँ, लेकिन वो गाने कौन से हैं जो मैं आपको सुनवाऊँ? कंप्यूटर जी प्लीज हेल्प। और आप सुनिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर ये बेहतरीन गाने, यहीं पर। मैं लौटता हूँ, इंतजार कीजिएगा मेरा यहीं पर।

0: 3, 2, 1.
1: और ग्रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

सिंगापुर ये जो हमारा दिल है ना, दिल बड़ा नटखट है, बड़ा ही बच्चा सा है, शरारती है, हर चीज अपने पास लेना चाहता है। कह सकते हैं कि दिल तो बच्चा ही है। नहीं, वैसे वो गाना भी तो है, दिल तो बच्चा है जी, कितना खूबसूरत है ना गाना। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज जो है, वाकई जैसा नाम वैसी आवाज, राहत सुकून देने वाली आवाज है कि नहीं। वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से कर रहा हूं आपका स्वागत। जाते जाते एक और फिल्म का जिक्र करूंगा। 2010 में एक फिल्म आई थी, नाम उसका बताऊं उससे पहले मैं उसकी कास्टिंग आपको बता देता हूं। नसीर साहब थे इसमें, नसीरुद्दीन शाह साहब, अरशद वारसी और विद्या बालन। समझ गए आप, इश्किया की बात कर रहा हूं मैं। गानों के साथ ही फिल्म को भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। यही तो वजह थी कि लगभग 4 साल के बाद भी, यानी कि साल 2014 में इश्किया का सीक्वल डेढ़ इश्किया रिलीज किया गया था। स्टार कास्ट लगभग पहले वाली थी, लेकिन बस बदलाव यह हुआ था कि विद्या बालन की जगह दो एक्ट्रेस आ गई थी, माधुरी दीक्षित और हुमा कुरैशी। वैसे पहले वाली इश्किया ने कमाई भी अच्छी की है और क्रिटिक्स के रिपोर्ट कार्ड में भी फिल्म पास हो गई, कई अवार्ड्स भी जीते इसने। खैर, ये तो बात हुई फिल्म की, फिर से मैं इश्किया के गानों की बात करता हूँ। कमाल के गाने थे फिल्म में, और कमाल के होते भी क्यों नहीं भाई, लिविंग लेजेंड और हम सभी के अजीज गुलजार साहब की कलम चली थी इन गानों पर, और इन शब्दों को संगीत देकर 4 चांद लगाने का काम किया था हिंदी सिनेमा के बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज साहब ने। अब बताइए गाने कैसे पसंद नहीं आएंगे आपको। एक और कमाल की बात यह रही कि इश्किया का जो म्यूजिक लॉन्च किया गया था वो साल की पहली तारीख थी, यानी कि 1 जनवरी 2010। महीने भर बाद फिल्म भी रिलीज हुई थी। बाकी दिल तो बच्चा है जी गाने के साथ ही इब्न बतूता गाना भी चार्टबस्टर टॉप की लिस्ट में रहा। खैर, अब बहुत बातें हो गई, अब एक काम करते हैं, इस फिल्म से कुछ गाने आपको सुनवा देते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, आपसे फिर मिलूंगा एक और शो में, यादों का कारवां के जरिए। अभी चलता हूँ, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए कीजिए वादा कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर सज जाएंगे। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे यहीं पर, मेरा नाम है समर, नमस्कार।

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: रात अकेली है
4: तो क्या, हम तो आप

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो।
0: रात अकेली है, रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
4: ओ सत्ते, तुम भी थोड़ी जी तुम भी पा दे। हाँ आ बन गई गल।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे।
1: घटा के संग संग,
2: संभलना।
1: हवा के साथ

रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो, make some noise for the Desi Boys।

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: और जी

चाह के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।

भैया जी।

जमाना उसी का मोहब्बत में जो

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: ये वो एक पे पिक्चर आ रही है ना,
3: कौन से?
2: बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
4: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
5: तेरी

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

दिन की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कुछ मेरे टाइप भी होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल राउंडर। मैं अपनी तारीफ क्यों कर रही हूँ? अरे क्योंकि यार आप मुझे इतना पसंद करते हैं, अंडर एस्टिमेट कैसे कर लूँ। हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। एंड यू नो व्हाट, बहुत वक्त से मैं अपने ऑफिस कलीग्स को ना बार बार ये बात बोल रही थी कि मेरे हाथ की कॉफी पीकर देखना, मजा आ जाएगा। तो सबने मुझे बोला कि ठीक है, कल तुम आओगी ना ऑफिस, तो अपने हाथ की कॉफी अब लेकर ही आना। और आज मैं जब लेकर आई तो लोगों ने मेरी इतनी तारीफ करी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया है। कभी आपको भी अपने हाथ की कॉफी पीने का मौका जरूर दूंगी। उस दिन ये बात सिद्ध हो जाएगी कि दिल का रास्ता पेट से भी जाता है। चलिए, अभी तो ये दिल तक का जो रास्ता है वो एंटरटेनमेंट से जाता है, गानों से जाता है, बातों से जाता है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर कमिंग अप आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल। तब तक आपके लिए बेहतरीन वाला गाना प्ले कर रही हूँ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: ऐसा होता है जब आप बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं ना, तो आप उस एहसास को जब भी मौका मिलता है इंटरव्यूज के थ्रू एक्सप्रेस भी करते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट मनोज बाजपेयी जी ने पुरानी धुंधली यादें यश चोपड़ा साहब के साथ शेयर कर ही दी आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, मतलब देखो, जब एक एक्टर डायरेक्टर की तारीफ करता है ना, तो डायरेक्टर में वो बात होती ही है। मतलब अब वो डायरेक्टर जो है वो इतना एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर रह चुका है कि उसके बारे में आज तक हमने कुछ गलत सुना ही नहीं है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यश चोपड़ा जी। मनोज बाजपेयी जी ने कहा कि एक दौर था, एक वक्त था, जब वीर जारा मूवी में मुझे बहुत छोटा सा रोल ऑफर जो है ना, वो यश चोपड़ा साहब की तरफ से आया। लेकिन बहुत छोटा था बट काफी इम्पैक्टफुल था, तो मैं मना नहीं कर पाया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उस छोटे से रोल के लिए यश चोपड़ा जी ने मनोज बाजपेयी जी को उतना ही अमाउंट पे किया जितना एक लीड एक्टर को वो उस वक्त कर सकते थे, या उनका जो लीड एक्टर की तरह चार्ज होता था। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने जमाने में लोग भर भर के कमा भी चुके हैं और खर्चा भी कर चुके हैं। एंड बस आखिरी में क्या रह जाता है, ये तारीफ ही आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: एक बात बताओ, आप अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान रखते हो या फिर किसी से डांट वाट खाने के बाद ज्यादा ध्यान रखने लगते हो? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे हाथ में होनी चाहिए। कोई आपके पीछे पीछे कब तक घूमेगा? इवन ड्राई फ्रूट्स के मामले में तो यार, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट एक दिन में खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे क्या बात कर रहे हैं, पिछले एक साल से मैं फिटनेस जर्नी फॉलो कर रही हूँ। आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो आपके साथ। सो सुबह सुबह ना, वो जो होता है ना, भीगे हुए जो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है उनको ग्राइंडर में हल्का ग्राइंड करो, फिर उसमें प्रोटीन का पाउडर डालो, फिर आप उसमें एक फ्रूट डालो, हल्का सा उसमें आप मिल्क भी ऐड कर सकते हो और एक बढ़िया सा शेक बनाकर भी पी सकते हो। एनीवेज, आप अगर हेल्दी ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में रखते हैं तो मंगाइए ना घर बैठे बैठे ggmartonline.com से, राइट? अगर हम पम्पकिन सीड्स की बात करें, 250 ग्राम $5 में आपको मिल रहा है यार। पिस्ता जो है वो आपको 500 ग्राम $9 में मिल रहे हैं। प्रीमियम सॉल्टेड कैश्यूज आपको 100 ग्राम $2.5 में मिल रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। एंड यू नो व्हाट, जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आप मुखवास की तरह गुलकंद, प्योर गुलकंद जो होता है ना, मतलब गुलाब गुलाब से बना हुआ, राइट, और नेचुरल शुगर से बना हुआ भी आप ले सकते हैं। गुलकंद 300 ग्राम आपको $2.3 में मिल जाएगा, वो भी ऑर्गेनिक। सो क्विकली पहुंचिए ggmartonline.com पर, जहां पर हेल्दी स्टफ्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: स्पेशल।
1: भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
2: दोस्ती,
0: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
1: और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सलूशन है।
2: सम रिलेशनशिप्स आर टेस्टेड, सम आर ट्रांसफॉर्म्ड।
3: माँ दुल्हन के लिए मेकअप।
2: शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2, रिलीजिंग आइलैंड वाइड ऑन 19th जून एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर। सिंगापुर, प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
4: 3, 2, 1
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
6: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
7: ओ माय गॉड, ये बात सुनने के बाद ना कोई और फील करे ना करे, मैंने फील कर लिया है नॉस्टैल्जिक एरा। हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर। एंड यू नो व्हाट, जब मैं बहुत छोटी थी और मेरे मामा लोगों की शादी थी, कजिन्स लोगों की शादी थी, या फिर दूर दूर से दूर वाली दीदियों की शादी थी, तो मेरी मामा ने ना मुझे एक गाने पर प्रोफेशनली डांस सिखा दिया था। दिल तो पागल है मूवी में एक गाना आया था ना, दिल ले गई ले गई, हाँ ले गई ले गई। इस गाने पे मैंने डांस ना कंठस्थ कर लिया था और किसी भी शादी में मैं इस गाने पे डांस कर देती थी। तो मम्मा सॉर्टेड थी, मैं सॉर्टेड थी। सो बताना चाहूंगी, रिसेंटली काफी सालों के बाद एक डांस रियलिटी शो में माधुरी दीक्षित एंड करिश्मा कपूर जब एक साथ मंच पर नजर आए, तो इसी गाने पर दिल ले गई ले गई, हाँ ले गई ले गई, तो हल्का सा इस गाने पे डांस करवाया गया। तो वही लोगों की भर भर के डिमांड आ गई है कि व्हाई नॉट, दिल तो पागल है मूवी का दूसरा पार्ट आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। आय हाय, क्या आपको लगता है दिल तो पागल है मूवी का सेकंड पार्ट आना चाहिए? देन डू कमेंट ऑन द ऐप आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.